आज हम उनके मुंहों पर मोहर लगा देंगे और जो कुछ ये करते रहे थे उनके हाथ हमसे बयान कर देंगे और उनके पांव उसकी गवाही देंगे।

0: FM 100's time check. It's 7 a.m. This public service message is brought to you by FM 100. गाड़ी चलाते वक्त ये ना सोचिए कि सिर्फ आपकी गलतियां हादसात का सबब बन सकती हैं। दूसरों की गलतियों के लिए भी तैयार रहिए। ट्रैफिक कवानीन की पाबंदी कीजिए।
1: FM 100 Like us on facebook.com/FM247365
2: FM247365
0: 31 years of memories, milestone and moments. FM 100 Pakistan. It's a legacy.
2: Assalamu alaikum, Pakistan. Let's celebrate the journey.
3: Allah, Allah, Allah, Allah.

तू पर गूंजती, मूसा की ये सदा है, जो हर शय में नजर आए बस वो ही खुदा है, खुदा है।

0: 7:15 AM. This time check is brought to you by Dr. Hamid General Homeo and Schwabe Germany, proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 75 remarkable years.
1: जब बात आपकी सेहत की हो तो खालिस्तान बहुत अहमियत रखता है। शोबे मयार की सख्त जांच पड़ताल करता है ताकि इस बात को यकीनी बनाया जा सके कि हर दवा असली और काबिल भरोसा हो। डॉक्टर हमीद जर्नल होमियो और शोबे जर्मनी, पिछले 75 सालों से सेहतमंद पाकिस्तान के लिए गोशा।
0: गली मोहल्लों में सफाई का खास ख्याल रखें, कहीं पर पानी खड़ा न होने दें। डेंगू जानलेवा मर्ज है, इलाज से बेहतर एहतियात है। This public service message is brought to you by FM 100.
2: कभी सोचा है कि अब जंग की सूरत क्या है? अब जंग मैदाने जंग में नहीं, हमारे जहनों में लड़ी जा रही है। अब दुश्मन की गोलियां बारूद नहीं, मालूमात हैं, और निशाना हम सब। रियासत मुखालिफ ताकतें हमारे घरों के दरवाजे तक पहुंच चुकी हैं। टेक्नोलॉजी और इंटरनेट के पर्दे में दुश्मन छुपा बैठा है। वो ढूंढता है कमजोर लम्हे, बेरोजगार नौजवान, जरूरतमंद खानदान, फिर उनके सामने बिछाता है ख्वाब, बड़ी नौकरी, तेज दौलत, बैरून मुल्क सफर, और फिर कभी रिपोर्टर की सूरत में, कभी एनजीओ वर्कर या फ्रीलांसर बनकर उनसे वो राज निकलवाता है जो दुश्मन का रास्ता खो देते हैं, जिनसे बदमनी, खौफ और फसाद हमारी गली कूचों तक उतर आते हैं, हमें अपनी ही मट्टी के खिलाफ खड़ा कर देता है। जो आपसे मालूमात लेता है वो आपकी जात तक पहुंचता है, आपकी तस्वीरें, पहचान, फोन, सब कुछ खतरे में डाल देता है। तो याद रखिए, किसी अजनबी को अपनी कोई हसास बात ना दीजिए। कोई मशकूक चीज, कॉल या पेशकश हो, फौरन रिपोर्ट कीजिए। हसास मकामात बस अपने इदारे तक रखिए, क्योंकि हर लफ्ज, हर क्लिक, हर तस्वीर या तो हिफाजत है या खतरा। फैसला आपके हाथ में है।
0: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया।
3: facebook.com/fm247365 FM 247365

0: अगली गाड़ी से रास्ता लेने के लिए दिन में हॉर्न और रात में बत्तियों का इस्तेमाल कीजिए और रास्ता मिलने का इंतजार कीजिए।
1: दिस मैसेज वॉज ब्रॉट टू यू बाई FM 100 पाकिस्तान।
2: FM 100 लाइक अस ऑन facebook.com/FM247365 FM 247 365

0: पाकिस्तान एसोसिएशन ऑफ डर्मेटोलॉजिस्ट एंड एटको लेबोरेटरीज के तावन से हर जुम्मा 12:30 से 1 मालूमाती प्रोग्राम जिसमें बात होगी स्किन कंडीशन के हवाले से। पाकिस्तान के नामवर डॉक्टर शिरकत करेंगे, तो सुनना न भूलें सिर्फ FM 100 पाकिस्तान पर।
1: दिस पब्लिक सर्विस मैसेज इज ब्रॉट टू यू बाय FM 100। बाइक चलाते वक्त हेलमेट का इस्तेमाल कीजिए, ट्रैफिक कवानीन की पाबंदी कीजिए। लाइक अस ऑन FM 24/7 365।
2: सोशल मीडिया सार्फीन खसूसन नौजवान नस्ल के लिए इंटरनेट के मनफी पहलुओं की आगाही इंतहाई जरूरी है। तोहीने रसालत, इस्लाम और रियासत मुखालिफ, फौश मवाद और झूठी खबरें इंटरनेट पर डालना या शेयर करना काफी सजा जुर्म है। लिहाजा हर किस्म के गैर कानूनी मवाद को इंटरनेट और सोशल मीडिया पर शेयर करने से गुरेज करें। ऐसे गैर कानूनी मवाद को हटाने के लिए PTA और ऐसे अफराद के खिलाफ कार्रवाई के लिए NCCIA से रुजू करें। ये मुफाद आमा का पैगाम अब तक पाकिस्तान टेली कम्युनिकेशन अथॉरिटी की जानिब से पेश किया गया है।
3: बैंकिंग सहूलियात जैसा कि माइक्रो फाइनेंस एप्स, जैज कैश, इजी पैसा और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स अमूमन सारिफ के रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर के साथ मुंसलिक होते हैं, जिसके जरिए ये अकाउंट्स न सिर्फ फाल किए जाते हैं बल्कि किसी तब्दीली की सूरत में तस्दीक के लिए भी इस्तेमाल किए जाते हैं। अगर कोई सिम आपके नाम से हटा दी जाए या तवील अरसे तक इस्तेमाल न होने की वजह से रिसाइकल होकर दोबारा जारी कर दी जाए तो यही नंबर किसी दूसरे शख्स को दिया जा सकता है। और अगर बर वक्त एहतियाती तदाबीर इख्तियार न की जाए तो नया सारिफ इस नंबर से मुंसलिक आपके सोशल या दिगर डिजिटल अकाउंट्स तक रसाई कर सकता है। ऐसे अकाउंट से की जाने वाली किसी भी गैर कानूनी, गुमराह कोनी या तौहीन आमेज सरगर्मी की जिम्मेदारी असल अकाउंट होल्डर पर आयद हो सकती है, जिसके नतीजे में कानूनी पेचीदगियां और शोहरत को नुकसान पहुंचने का खदशा होता है। इसी तरह अगर पुराने नंबर से मुंसलिक बैंकिंग या मालियाती एप्स महफूज न की जाए तो माली धोखाधही और गलत इस्तेमाल का खतरा भी पैदा हो सकता है। अपने ऑनलाइन तहफ्फुज के पेश नजर ये इकदाम जरूर उठाएं। जैसे ही कोई नंबर अपने नाम से हटाएं या तब्दील करें, फौरन अपने तमाम सोशल मीडिया और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स अपडेट कर लें। अपने बैंक, माइक्रो फाइनेंस और पेमेंट ऐप्स में हमेशा अपना मौजूदा और फाल नंबर रखें। अकाउंट्स में मजबूत सिक्योरिटी फीचर्स फाल करें, जैसा कि 2-फैक्टर ऑथेंटिकेशन और अकाउंट रिकवरी की सेटिंग्स। डिजिटल तहफ्फुज का आगाज सिम के जिम्मेदाराना इस्तेमाल से ही मुमकिन है। बर वक्त और पेश के इकदाम आपकी शनाख्त, माली तहफ्फुज और कानूनी हैसियत में मददगार साबित होते हैं। डिजिटल दुनिया में महफूज कदम PTA।

0: FM 100's time check. It's 8 a.m.
1: जब जिंदगी एक लफ्ज से रुक सी जाए, कैंसर, सिर्फ एक बीमारी नहीं, एक इम्तिहान है। हर दिन एक जंग से कम नहीं, एक ऐसी जंग जिसमें बहुत से लोग नाउम्मीद हो जाते हैं, मगर अब मायूसी उम्मीद में बदल रही है। डाउ कॉम्प्रिहेंसिव कैंसर सेंटर, हुकूमत सिंध का वो कदम जहां कैंसर का इलाज अब एक नए मायार पर मुमकिन है। गामा नाइफ एडवांस टेक्नोलॉजी के जरिए ब्रेन ट्यूमर का बगैर सर्जरी के इलाज किया जाता है, जो उमूमन एक ही दिन में मुमकिन होता है, और इसके जरिए एडवांस स्टेज ब्रेन ट्यूमर्स यानी तीसरे और चौथे स्टेज के साथ मल्टीपल मेटास्टेटिस का इलाज भी मुमकिन है। जदीद तरीन MR लिनक मशीन की बदौलत अब कैंसर जिस्म के किसी भी हिस्से में छुप नहीं सकता, दौरान इलाज इसे बराह रास्त देखा जा सकता है और रेडिएशन को उसके रिएक्शन के मुताबिक फौरन एडजस्ट किया जाता है। यहाँ पूरे पाकिस्तान से आए हुए लोगों का इलाज मुफ्त किया जाता है। अब कैंसर का फौरी इलाज ख्वाब नहीं, हकीकत बन चुका है, जो हुकूमत सिंध और चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी के विजन से मुमकिन हुआ, क्योंकि ये सिर्फ इलाज नहीं, उम्मीद है हर उस चेहरे की जो जीना चाहता है। खिदमत में सबसे आगे सिंध।
2: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ अपने ख्वाबों और बिजनेस को दे आजादी की उड़ान। मुफ्त IBFT, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ अकाउंट खोले डिजिटली या विजिट करें अपनी करीबी HBL ब्रांच। HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां ख्वाब वहां HBL।

0: महराना देखभाल में फितर परवान चढ़ती है। शॉबी सिंगल रेमेडीज मखसूस हर्बल फार्म्स और नबताती बागा से हासिल की जाती हैं, ताकि आपको ऐसा मयार मिले जिस पर आप मुकम्मल भरोसा कर सकें। डॉक्टर हमीद जनरल होम्यो और शॉबी जर्मनी के पाकिस्तान में 75 साल सिर्फ सेहतमंद पाकिस्तान के नाम।
1: बेहतरीन इंश्योरेंस हर वक्त आपके साथ, जैसे इजी पैसा इंश्योरेंस मार्केट प्लेस, 50 से ज्यादा प्लान, बेहतरीन कवरेज, खास डिस्काउंट्स और सिर्फ 24 घंटों में क्लेम हासिल करने की सहूलत। कवर 3 के लिए डेडिकेटेड प्लान्स और 25,000 टॉप डॉक्टर्स से कंसल्टेशन भी। अभी इजी पैसा ऐप पर इंश्योरेंस मार्केट प्लेस एक्सप्लोर करें। इजी पैसा डिजिटल बैंक, इजी वाला बैंक।
2: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ मुफ्त IBFT, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां खाब वहां HBL।
3: जैज कैश के साथ पाओ फिर से 1 करोड़ जीतने का शानदार मौका। अब हर महीने अपने जैज कैश अकाउंट में 15,000 रुपए या ज्यादा का बैलेंस मेंटेन करने पर 60 लकी विनर्स को मिलेगा 5,00,000 रुपए तक का इनाम, और साथ ही साथ मिलेगा 1 करोड़ का बम्पर प्राइज। बैलेंस मेंटेन करने पर करोड़ों के कैश प्राइजेस जीतने के लिए जैज कैश है ना।
4: हायर का नया नो फ्रॉस्ट IoT रेफ्रिजरेटर, जिसका मल्टी एयर फ्लो सिस्टम दे बैलेंस्ड कूलिंग हर कंपार्टमेंट में और रखे आपके रेफ्रिजरेटर को क्लीन। टू इन्वर्टर टेक्नोलॉजी जिससे मिले मैक्सिमम कूलिंग और एनर्जी सेविंग। नो फ्रॉस्ट, नो वरीज।
2: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ मुफ्त IBFT, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां खाब वहां HBL।
4: हायर नो फ्रॉस्ट IoT रेफ्रिजरेटर, इसकी IoT टेक्नोलॉजी फूड एक्सपायरी नोटिफिकेशन के साथ साथ आपको दे मोबाइल ऐप से कंप्लीट कंट्रोल। नो फ्रॉस्ट, नो वरीज।
5: नाज़रीन, ताज़ा तरीन खबर से आपको आगाह करेंगे कि पूरे शहर में फैल चुकी है आपके टॉयलेट की बदबू।
6: बंद करो ना ढक्कन।
7: स्वीपी क्लीन करे तेजी से सख्त दाग और जरासीम का खात्मा, और रखे टॉयलेट को चमकता हुआ साफ।
2: This program is brought to you by
4: Hire का नया नो फ्रॉस्ट IoT रेफ्रिजरेटर, टू इन्वर्टर टेक्नोलॉजी जिससे मिले मैक्सिमम कूलिंग और एनर्जी सेविंग। नो फ्रॉस्ट, नो वरी।
7: एंड स्वीपी क्लीन करे तेजी से सख्त दाग और जरासीम का खात्मा, और रखे टॉयलेट को चमकता हुआ साफ।
2: एंड HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां खाब वहां HBL।

0: terror.
1: It's 8:15 a.m. This time check is brought to you by Dr. Hamid General Homeo and Schwabe Germany, proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 75 remarkable years.
2: HBL Freedom Account ke saath apne khwabon aur business ko de azadi ki udaan. Muft IBFT, muft checkbook, muft online banking aur behtareen mobile app ki sahulat ke saath account khole digitally ya visit kare apni kareebi HBL branch. HBL Freedom Account, jahan khwab wahan HBL.
3: आम चीजों पर समझौता क्यों करें? शोबे सिंगल रेमेडीज मुस्तनद जर्मन महारत के साथ तैयार करदा कुदरत के बेहतरीन नज़ा लाए हैं ताकि आपकी सेहत की बेहतरीन देखभाल हो सके. डॉक्टर हमीद जनरल होमियो और शोबे सिंगल रेमेडीज, भरोसे देखभाल और जर्मन महारत के 75 साल.
2: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ मुफ्त IBFT, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां खाब वहां HBL.
4: Hire No Frost IoT Refrigerator. इसकी IoT टेक्नोलॉजी फूड एक्सपायरी नोटिफिकेशन के साथ साथ आपको दे मोबाइल ऐप से कंप्लीट कंट्रोल. No Frost, No Worries.
1: This program is brought to you by
4: Hire Kanaya No Frost IoT Refrigerator. Twin Inverter Technology, जिससे मिले maximum cooling और energy saving. No Frost, No Worries.
5: And Sweepy Clean. करे तेजी से सख्त दाग और जरासीम का खात्मा और रखे टॉयलेट को चमकता हुआ साफ.
2: And HBL Freedom Account, जहां खाब वहां HBL.

0: si Joy. Cancer. सिर्फ एक बीमारी नहीं, एक इम्तिहान है। हर दिन एक जंग से कम नहीं, एक ऐसी जंग जिसमें बहुत से लोग नाउम्मीद हो जाते हैं। मगर अब मायूसी उम्मीद में बदल रही है। डाउ कॉम्प्रिहेंसिव कैंसर सेंटर, हुकूमत सिंध का वो कदम जहां कैंसर का इलाज अब एक नए मयार पर मुमकिन है। गामा नाइफ एडवांस टेक्नोलॉजी के जरिए ब्रेन ट्यूमर का बगैर सर्जरी के इलाज किया जाता है, जो उमूमन एक ही दिन में मुमकिन होता है, और इसके जरिए एडवांस स्टेज ब्रेन ट्यूमर्स यानी तीसरे और चौथे स्टेज के साथ मल्टीपल मेटास्टेटिस का इलाज भी मुमकिन है। जदीद तरीन MR लिनक मशीन की बदौलत अब कैंसर जिस्म के किसी भी हिस्से में छुप नहीं सकता, दौरान इलाज इसे बराह रास्त देखा जा सकता है और रेडिएशन को उसके रिएक्शन के मुताबिक फौरन एडजस्ट किया जाता है। यहाँ पूरे पाकिस्तान से आए हुए लोगों का इलाज मुफ्त किया जाता है। अब कैंसर का फौरी इलाज ख्वाब नहीं, हकीकत बन चुका है, जो हुकूमत सिंध और चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी के विजन से मुमकिन हुआ। क्योंकि ये सिर्फ इलाज नहीं, उम्मीद है हर उस चेहरे की जो जीना चाहता है। खिदमत में सबसे आगे सिंध।
1: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ अपने ख्वाबों और बिजनेस को दे आजादी की उड़ान। मुफ्त IBFT, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ अकाउंट खोले डिजिटली या विजिट करें अपनी करीबी HBL ब्रांच। HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां ख्वाब वहां HBL।

0: रेन करे तेजी से सख्त दाग और जरासीम का खात्मा और रखे टॉयलेट को चमकता हुआ साफ।
1: दिस प्रोग्राम इज ब्रॉट टू यू बाय
2: हायर का नया नो फ्रॉस्ट IoT रेफ्रिजरेटर, ट्विन इन्वर्टर टेक्नोलॉजी जिससे मिले मैक्सिमम कूलिंग और एनर्जी सेविंग। नो फ्रॉस्ट, नो वरी।
0: एंड स्वीपी क्लीन करे तेजी से सख्त दाग और जरासीम का खात्मा और रखे टॉयलेट को चमकता हुआ साफ।
3: एंड HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां खा वहां HBL।

us on facebook.com/FM247365. FM 100 traffic update.

0: 1.1 FM, your location for maximum music.
1: HBL Freedom Account के साथ अपने ख्वाबों और बिजनेस को दे आजादी की उड़ान. मुफ्त IBFT, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग
2: और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ
1: अकाउंट खोले डिजिटली या विजिट करें अपनी करीबी HBL ब्रांच. HBL Freedom Account, जहां ख्वाब वहां HBL.

0: HBL Freedom Account के साथ मुफ्त IDFT, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL Freedom Account, जहां खाब वहां HBL।
1: हायर कर नया नो फ्रॉस्ट IoT रेफ्रिजरेटर जिसका मल्टी एयर फ्लो सिस्टम दे बैलेंस्ड कूलिंग हर कंपार्टमेंट में और रखे आपके रेफ्रिजरेटर को क्लीन। ट्विन इन्वर्टर टेक्नोलॉजी जिससे मिले मैक्सिमम कूलिंग और एनर्जी सेविंग। नो फ्रॉस्ट, नो वरीज।
2: This program is brought to you by
1: Hire Kar Naya No Frost IoT Refrigerator Twin Inverter Technology jisse mile maximum cooling aur energy saving No Frost No Worries
3: And Sweepy Clean kare tezi se sakht daag aur jarasim ka khatma aur rakhe toilet ko chamakta hua saaf
0: And HBL Freedom Account jahan khwab wahan HBL
4: And

0: तेजी से फैलती डिजिटल दुनिया एक जबरदस्त सलाहियत के साथ साथ एक अहम जिम्मेदारी भी। मजहबी, फिरका वाराना या नस्ली बुनियाद पर नफरत अंगेजी, दहशत गर्दी की तरगीब से मुतल्लिक किसी भी तरह का मवाद फैलाना, इलेक्ट्रॉनिक जालसाजी, स्पैमिंग, धोखादही, बशमूल आइडेंटिटी थेफ्ट, चाइल्ड पोर्नोग्राफी और साइबर स्टॉकिंग और अनचाही मुदाखलत, मसलन किसी भी फर्द से जबरदस्ती या बार बार राबिता करना, मुतल्लिका शख्स की रजामंदी के बगैर उसकी तस्वीर या वीडियोस बनाना और शेयर करना वगैरह संगीन जराइम है। इस तरह की खिलाफ वर्जियाँ पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट और दीगर कानून के तहत कानूनी नतायज की मुतहम्मिल हैं। अगर आप इस बारे में कोई सवाल करना, इस सिलसिले में मदद तलब करना, किसी वाकये की इत्तला देना या इन कानून की खिलाफ वर्जी के मुर्तकिब अफराद के बारे में हुकूमत की मुआवनत करना चाहते हैं तो बराहे करम हमारी हेल्पलाइन पर कॉल करें।
1: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया। बच्चों का ऑनलाइन तहफ्फुज़ आपकी जिम्मेदारी है। अपने बच्चों को ऑनलाइन राब्तों का महफूज तरीका इस्तेमाल सिखाएं। इंटरनेट के जरिए खेलों, तफरी और तालीमी सरगर्मियों में शामिल होने के फवायद जरूर हैं, लेकिन इसमें नामुनासिब मवाद, साइबर बुलिंग और दीगर ऑनलाइन नुकसानात जैसे मुमकिन खतरात भी मौजूद हैं। वालिदैन और असातिज़ा की जानिब से बच्चों की निगरानी और रहनुमाई न होने की सूरत में बच्चे बासानी मनफी सरगर्मियों का शिकार हो सकते हैं। वालिदैन को अपने बच्चों की ऑनलाइन सरगर्मियों के हवाले से आगाह और होशियार रहने की जरूरत है। बच्चों को नुकसानदेह मवाद जैसे नफरत अंगेज तकरीर, गुस्ताखाना और फहाश मवाद वगैरह अपलोड और शेयर करने के कानूनी नतायज के हवाले से भी शऊर और आगाही इंतहाई अहमियत की हामिल है। पीटीए की वेबसाइट पर पेरेंटल कंट्रोल सॉफ्टवेयर की एक फहरिस्त दस्तियाब है ताकि वालदैन अपने बच्चों की ऑनलाइन सरगर्मियों की निगरानी करते हुए उन्हें ऑनलाइन नुकसान से महफूज रखें। www.pta.gov.pk। मुफाद आमा के लिए ये पैगाम FM 100 और हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया।
2: पाकिस्तान हमसे है, हम अच्छे तो पाकिस्तान अच्छा। तो आओ अहद करें कि जैसा पाकिस्तान हम देखना चाहते हैं वैसे खुद बनकर दिखाएंगे, क्योंकि हम बदलेंगे तो बदलेगा पाकिस्तान। अजमी इस्तेहकाम, मुस्तहकम पाकिस्तान।
1: मुफाद आम्मा के लिए पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया।
3: ख्वाब तो सब देखते हैं बेहतर रोजगार का, मगर इस ख्वाब की ताबीर के गैर कानूनी जराए खतरनाक रस्तों पे ले जा सकते हैं, जहां मौत मुंह खोले आपकी मुंतजर है।
4: हमने आप ना कुछ तीन बार मौत देखे।
5: टाइम से मनु ऐसे ही के मैं हूँ, कब्र से चला गया, मैं नहीं बचा।
6: फिर उन्होंने साड़ी वीडियो बनाया, सानू मारिया, सानू कुटिया।
3: अपने ख्वाबों की तकमील के लिए कानूनी रास्ता इख्तियार करें।
7: एम्बेसी के थ्रू प्रॉपर वे में सबमिट करवाया और बहुत ही जल्दी मेरा वीजा लग गया था वर्क वीजा।
3: इंसानी स्मगलिंग में मुलविस गिरोहों के सद्देबाप के लिए वजीर आजम पाकिस्तान की सरबराही में खुसूसी टास्क फोर्स का कयाम, मुलगीर क्रैकडाउन जारी। एजेंट्स और सरकारी एहलकारान के खिलाफ मुकदमात का इंदराज, गिरफ्तारियां, जायदादों की जब्तगी और बैंक अकाउंट्स मुंजमित किए जा रहे हैं। अंदरूनों बैरून मुल्क बेहतर रोजगार के लिए प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम और नेफटेक के जदीद तरीन और मुफ्त कोर्सेज में अभी दाखिला लें। मकामात मुकद्दसा की ज़ियारत को जाने वाले ज़ायरीन भी कानूनी ज़राए इख्तियार करें। इंसानी स्मगलरों के चुंगल से बचें, ख्वाब जरूर देखें, बेहतर रास्ता चुनें। हुकूमत पाकिस्तान।
1: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया।
8: FM 100 लाइक अस ऑन facebook.com/fm247365।
9: किसी भी इंसान के लिए सबसे अहम होती है उसकी सेहत।
10: किसी भी शख्स को देख के उसकी सेहत के बारे में अंदाजे ना लगाएं।
9: मुझे पता है कि मेरा वजन ज्यादा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं वॉक नहीं करता।
11: जी हाँ, मुझे भी लोग मोटी कहते हैं, मगर ऐसा नहीं कि मैं बहुत खाती हूँ।
12: हम बिना किसी तहकीक के बस बातें बनाने का फन जानते हैं। सामने वाले पर क्या गुजरी हमें से क्या।
9: मैं ओबेसिटी का शिकार हूँ, सिर्फ वॉक से ये कम नहीं।
11: मोटापा एक बीमारी है, सिर्फ मीठा ना खाने से खत्म नहीं होगी।
12: सिर्फ बातें बनाने से हम उसका मुकाबला नहीं कर सकते।
11: अभी इसी वक्त
13: अपना BMI चेक करवाइए,
14: यानी अपने वेट को अपनी हाइट की मुनासिबत से जांचिए
13: और इस वजन की असल हकीकत को समझे।
14: आइए वेट से आगे का सोचें।
1: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया।

0: Sports. Your location for maximum music. FM 100's time check. It's 9 a.m.
1: जब जिंदगी एक लफ्ज से रुक सी जाए, कैंसर, सिर्फ एक बीमारी नहीं, एक इम्तिहान है। हर दिन एक जंग से कम नहीं, एक ऐसी जंग जिसमें बहुत से लोग नाउम्मीद हो जाते हैं। मगर अब मायूसी उम्मीद में बदल रही है। डाउ कॉम्प्रिहेंसिव कैंसर सेंटर, हुकूमत सिंध का वो कदम जहां कैंसर का इलाज अब एक नए मायार पर मुमकिन है। गामा नाइफ एडवांस टेक्नोलॉजी के जरिए ब्रेन ट्यूमर का बगैर सर्जरी के इलाज किया जाता है, जो उमूमन एक ही दिन में मुमकिन होता है, और इसके जरिए एडवांस स्टेज ब्रेन ट्यूमर्स यानी तीसरे और चौथे स्टेज के साथ मल्टीपल मेटास्टेटिस का इलाज भी मुमकिन है। जदीद तरीन MR लिनक मशीन की बदौलत अब कैंसर जिस्म के किसी भी हिस्से में छुप नहीं सकता, दौरान इलाज इसे बराह रास्त देखा जा सकता है और रेडिएशन को उसके रिएक्शन के मुताबिक फौरन एडजस्ट किया जाता है। यहाँ पूरे पाकिस्तान से आए हुए लोगों का इलाज मुफ्त किया जाता है। अब कैंसर का फौरी इलाज ख्वाब नहीं, हकीकत बन चुका है, जो हुकूमत सिंध और चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी के विजन से मुमकिन हुआ। क्योंकि ये सिर्फ इलाज नहीं, उम्मीद है हर उस चेहरे की जो जीना चाहता है। खिदमत में सबसे आगे सिंध।
2: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ अपने ख्वाबों और बिजनेस को दे आजादी की उड़ान। मुफ्त IBFT, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग
3: और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ
2: अकाउंट खोले डिजिटली या विजिट करें अपनी करीबी HBL ब्रांच। HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां ख्वाब वहां HBL।
4: जब बात आपकी सेहत की हो तो खालिस्पन बहुत अहमियत रखता है। शोबे मयार की सख्त जांच पड़ताल करता है ताकि इस बात को यकीनी बनाया जा सके कि हर दवा असली और काबिल भरोसा हो। डॉक्टर हमीद जर्नल होमियो और शोबे जर्मनी, पिछले 75 सालों से सेहतमंद पाकिस्तान के लिए गोशा।
5: हायर का नया नो फ्रॉस्ट IoT रेफ्रिजरेटर, जिसका मल्टी एयर फ्लो सिस्टम दे बैलेंस्ड कूलिंग हर कंपार्टमेंट में और रखे आपके रेफ्रिजरेटर को क्लीन। ट्विन इन्वर्टर टेक्नोलॉजी, जिससे मिले मैक्सिमम कूलिंग और एनर्जी सेविंग। नो फ्रॉस्ट, नो वरीज।
6: जैस कैश के साथ पाओ फिर से 1 करोड़ जीतने का शानदार मौका। अब हर महीने अपने जैस कैश अकाउंट में 15,000 रुपए या ज्यादा का बैलेंस मेंटेन करने पर 60 लकी विनर्स को मिलेगा 5,00,000 रुपए तक का इनाम, और साथ ही साथ मिलेगा 1 करोड़ का बम्पर प्राइज। बैलेंस मेंटेन करने पर करोड़ों के कैश प्राइजेस जीतने के लिए जैस कैश है ना।
7: नाज़रीन, ताज़ा तरीन खबर से आपको आगाह करेंगे कि पूरे शहर में फैल चुकी है आपके टॉयलेट की बदबू।
8: बंद करो ना ढक्कन।
9: स्वीपी क्लीन करे तेजी से सख्त दाग और जरासीम का खात्मा, और रखे टॉयलेट को चमकता हुआ साफ।
2: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ मुफ्त IBFT, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग
3: और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ
2: HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां ख्वाब वहां HBL।
5: हायर नो फ्रॉस्ट IoT रेफ्रिजरेटर, इसकी IoT टेक्नोलॉजी फूड एक्सपायरी नोटिफिकेशन के साथ साथ आपको दे मोबाइल ऐप से कंप्लीट कंट्रोल। नो फ्रॉस्ट, नो वरीज।
10: बेहतरीन इंश्योरेंस हर वक्त आपके साथ, जैसे इजी पैसा इंश्योरेंस मार्केट प्लेस, 50 से ज्यादा प्लान, बेहतरीन कवरेज, खास डिस्काउंट्स और सिर्फ 24 घंटों में क्लेम हासिल करने की सहूलत। कवर 3 के लिए डेडिकेटेड प्लान और 25,000 टॉप डॉक्टर से कंसल्टेशन भी। अभी इजी पैसा ऐप पर इंश्योरेंस मार्केट प्लेस एक्सप्लोर करें। इजी पैसा डिजिटल बैंक, इजी वाला बैंक।
2: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ मुफ्त IBFT, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां ख्वाब वहां HBL।

0: It's 9:15 a.m. This time check is brought to you by Dr. Hamid General Homeo and Schwabe Germany, proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 75 remarkable years.
1: HBL Freedom Account ke saath muft IBFT, muft checkbook, muft online banking aur behtareen mobile app ki sahulat ke saath. HBL Freedom Account, jahan khwab wahan HBL.
2: महराना देखभाल में फितरत परवान चढ़ती है. शॉबे सिंगल रेमेडीज मखसूस हर्बल फार्म्स और नबताती बागा से हासिल की जाती हैं, ताकि आपको ऐसा मयार मिले जिस पर आप मुकम्मल भरोसा कर सकें. डॉक्टर हमीद जर्नल होमियो और शॉबे जर्मनी के पाकिस्तान में 75 साल सिर्फ सेहतमंद पाकिस्तान के नाम.
3: हायर नो फ्रॉस्ट IoT रेफ्रिजरेटर. इसकी IoT टेक्नोलॉजी फूड एक्सपायरी नोटिफिकेशन के साथ साथ आपको दे मोबाइल ऐप से कंप्लीट कंट्रोल. नो फ्रॉस्ट, नो वरीज.
0: This program is brought to you by
3: Hire Kanaya, No Frost IoT Refrigerator, Twin Inverter Technology, jisse mile maximum cooling aur energy saving. No frost, no worries.
4: And Sweepy Clean, kare tezi se sakht daag aur jarasim ka khatma, aur rakhe toilet ko chamakta hua saaf.
1: And HBL Freedom Account, jahan khwab, wahan HBL. And

0: It's 9:30 a.m. This time check is brought to you by HBL Freedom Account. Jahan khwab, wahan HBL.
1: Jab zindagi ek lafz se ruk si jaye, cancer. Sirf ek bimari nahi, ek imtihan hai. Har din एक जंग से कम नहीं, एक ऐसी जंग जिसमें बहुत से लोग नाउम्मीद हो जाते हैं, मगर अब मायूसी उम्मीद में बदल रही है। डाउ कॉम्प्रिहेंसिव कैंसर सेंटर, हुकूमत सिंध का वो कदम जहां कैंसर का इलाज अब एक नए मायार पर मुमकिन है। गामा नाइफ एडवांस टेक्नोलॉजी के जरिए ब्रेन ट्यूमर का बगैर सर्जरी के इलाज किया जाता है, जो उमूमन एक ही दिन में मुमकिन होता है, और इसके जरिए एडवांस स्टेज ब्रेन ट्यूमर्स यानी तीसरे और चौथे स्टेज के साथ मल्टीपल मेटास्टेटिस का इलाज भी मुमकिन है। जदीद तरीन MR लिनक मशीन की बदौलत अब कैंसर जिस्म के किसी भी हिस्से में छुप नहीं सकता, दौरान इलाज इसे बराह रास्त देखा जा सकता है और रेडिएशन को उसके रिएक्शन के मुताबिक फौरन एडजस्ट किया जाता है। यहाँ पूरे पाकिस्तान से आए हुए लोगों का इलाज मुफ्त किया जाता है। अब कैंसर का फौरी इलाज ख्वाब नहीं हकीकत बन चुका है, जो हुकूमत सिंध और चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी के विजन से मुमकिन हुआ, क्योंकि ये सिर्फ इलाज नहीं उम्मीद है हर उस चेहरे की जो जीना चाहता है। खिदमत में सबसे आगे सिंध।
2: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ अपने ख्वाबों और बिजनेस को दे आजादी की उड़ान। मुफ्त IBFT, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग
3: और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ
2: अकाउंट खोले डिजिटली या विजिट करें अपनी करीबी HBL ब्रांच। HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां ख्वाब वहां HBL।
4: आम चीजों पर समझौता क्यों करें? शोबे सिंगल रेमेडीज मुस्तनद जर्मन महारत के साथ तैयार करदा कुदरत के बेहतरीन अज्जा लाए हैं, ताकि आपकी सेहत की बेहतरीन देखभाल हो सके। डॉक्टर हमीद जर्नल होमियो और शोबे सिंगल रेमेडीज, भरोसे देखभाल और जर्मन महारत के 75 साल।
5: हायर नो फ्रॉस्ट IoT रेफ्रिजरेटर, इसकी IoT टेक्नोलॉजी फूड एक्सपायरी नोटिफिकेशन के साथ साथ आपको दे मोबाइल ऐप से कंप्लीट कंट्रोल। नो फ्रॉस्ट, नो वरीज।
2: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ मुफ्त IBFT, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग
3: और बेहतरीन मोबाइल

0: जैस कैश के साथ पाओ फिर से 1 करोड़ जीतने का शानदार मौका। अब हर महीने अपने जैस कैश अकाउंट में 15,000 रूपए या ज्यादा का बैलेंस मेंटेन करने पर 60 लकी विनर्स को मिलेगा 5 लाख रूपए तक का इनाम, और साथ ही साथ मिलेगा 1 करोड़ का बम्पर प्राइज। बैलेंस मेंटेन करने पर करोड़ों के कैश प्राइजेस जीतने के लिए जैस कैश है ना।
1: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ अपने ख्वाबों और बिजनेस को दें आजादी की उड़ान। मुफ्त IBFT, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ अकाउंट खोलें डिजिटली या विजिट करें अपनी करीबी HBL ब्रांच। HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां ख्वाब वहां HBL।
2: नाजरीन, ताज़ा तरीन खबर से आपको आगाह करेंगे कि पूरे शहर में फैल चुकी है आपके टॉयलेट की बदबू।
3: बंद करो ना ढक्कन।
4: स्वीप बी क्लीन करे तेजी से सख्त दाग और जरासीम का खात्मा, और रखे टॉयलेट को चमकता हुआ साफ।
5: बेहतरीन इंश्योरेंस हर वक्त आपके साथ, जैसे इजी पैसा इंश्योरेंस मार्केट प्लेस, 50 से ज्यादा प्लान्स, बेहतरीन कवरेज, खास डिस्काउंट्स और सिर्फ 24 घंटों में क्लेम हासिल करने की सहूलत। कवर 3 के लिए डेडिकेटेड प्लान्स और 25,000 टॉप डॉक्टर्स से कंसल्टेशन भी। अभी इजी पैसा ऐप पर इंश्योरेंस मार्केट प्लेस एक्सप्लोर करें। इजी पैसा डिजिटल बैंक, इजी वाला बैंक।
6: पैसे खर्च हो तो रिवॉर्ड तो बनता है। जैस कैश से सिर्फ 99 रूपए में रिवॉर्ड हब सब्सक्राइब करें, चैलेंजेस कंप्लीट करके अपना लेवल अपग्रेड करें और जीतें शानदार प्राइजेस। तो देर किस बात की, हर चैलेंज को एक्साइटिंग रिवॉर्ड में बदलने के लिए जैस कैश है ना।
7: This program is brought to you by
8: Hire Kan Naya No Frost IoT Refrigerator Twin Inverter Technology जिससे मिले maximum cooling और energy saving. No frost, no worries.
4: And Sweep Be Clean करे तेजी से सख्त दाग और जरासीम का खात्मा, और रखे टॉयलेट को चमकता हुआ साफ।
1: And HBL Freedom Account, जहां ख्वाब वहां HBL.

Like us on facebook.com/FM247365. FM 247365.

0: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ अपने ख्वाबों और बिजनेस को दे आजादी की उड़ान। मुफ्त IBFT, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग
1: और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ
0: अकाउंट खोले डिजिटली या विजिट करें अपनी करीबी HBL ब्रांच। HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां ख्वाब वहां HBL।
2: हायर का नया नो फ्रॉस्ट IoT रेफ्रिजरेटर, जिसका मल्टी एयर फ्लो सिस्टम दे बैलेंस्ड कूलिंग हर कंपार्टमेंट में और रखे आपके रेफ्रिजरेटर को क्लीन। ट्विन इन्वर्टर टेक्नोलॉजी, जिससे मिले मैक्सिमम कूलिंग और एनर्जी सेविंग। नो फ्रॉस्ट, नो वरीज।
0: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ मुफ्त IBFT, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग
1: और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ
0: HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां ख्वाब वहां HBL।

0: जब जिंदगी एक लफ्ज से रुक सी जाए, कैंसर सिर्फ एक बीमारी नहीं, एक इम्तिहान है। हर दिन एक जंग से कम नहीं, एक ऐसी जंग जिसमें बहुत से लोग नाउम्मीद हो जाते हैं। मगर अब मायूसी उम्मीद में बदल रही है। डाउ कॉम्प्रिहेंसिव कैंसर सेंटर, हुकूमत सिंध का वो कदम जहां कैंसर का इलाज अब एक नए मायार पर मुमकिन है। गामा नाइफ एडवांस टेक्नोलॉजी के जरिए ब्रेन ट्यूमर का बगैर सर्जरी के इलाज किया जाता है, जो उमूमन एक ही दिन में मुमकिन होता है। और इसके जरिए एडवांस स्टेज ब्रेन ट्यूमर्स यानी तीसरे और चौथे स्टेज के साथ मल्टीपल मेटास्टेटिस का इलाज भी मुमकिन है। जदीद तरीन MR लिनक मशीन की बदौलत अब कैंसर जिस्म के किसी भी हिस्से में छुप नहीं सकता। दौरान इलाज इसे बराह रास्त देखा जा सकता है और रेडिएशन को उसके रिएक्शन के मुताबिक फौरन एडजस्ट किया जाता है। यहाँ पूरे पाकिस्तान से आए हुए लोगों का इलाज मुफ्त किया जाता है। अब कैंसर का फौरी इलाज ख्वाब नहीं, हकीकत बन चुका है, जो हुकूमत सिंध और चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी के विजन से मुमकिन हुआ। क्योंकि ये सिर्फ इलाज नहीं, उम्मीद है हर उस चेहरे की जो जीना चाहता है। खिदमत में सबसे आगे सिंध।
1: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ अपने ख्वाबों और बिजनेस को दे आजादी की उड़ान। मुफ्त IBFT, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ अकाउंट खोले डिजिटली या विजिट करें अपनी करीबी HBL ब्रांच। HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां ख्वाब वहां HBL।
2: हायर कर नया नो फ्रॉस्ट IoT रेफ्रिजरेटर, जिसका मल्टी एयर फ्लो सिस्टम दे बैलेंस्ड कूलिंग हर कंपार्टमेंट में और रखे आपके रेफ्रिजरेटर को क्लीन। ट्विन इन्वर्टर टेक्नोलॉजी, जिससे मिले मैक्सिमम कूलिंग और एनर्जी सेविंग। नो फ्रॉस्ट, नो वरीज।
3: खालिस अज्जा, भरोसेमंद शिफा, श्वाबे सिंगल रेमेडीज कुदरत के बेहतरीन अज्जा से तैयार की गई हैं, क्योंकि आपकी सेहत इससे कम की हकदार नहीं। डॉक्टर हमीद जनरल होमियो और श्वाबे सिंगल रेमेडीज 75 सालों से पाकिस्तान में नस्लों का भरोसा।
1: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ मुफ्त IBFT, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां ख्वाब वहां HBL।
2: हायर नो फ्रॉस्ट IoT रेफ्रिजरेटर, इसकी IoT टेक्नोलॉजी फूड एक्सपायरी नोटिफिकेशन के साथ साथ आपको दे मोबाइल ऐप से कंप्लीट कंट्रोल। नो फ्रॉस्ट, नो वरीज।
1: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ मुफ्त IBFT, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां ख्वाब वहां HBL।
4: facebook.com/fm247365
5: بین الاقوامی سفر پر روانہ ہونے والے متوجہ ہوں، ایسی آن لائن ایپس اور پلیٹ فارم سے اجتناب کریں جو پیسوں کی عوض کسی نامعلوم شخص کا سامان آپ کے اپنے سامان کے ساتھ لے جانے کے لیے کریں۔ یہ آسان کمائی کا طریقہ تو نظر آتا ہے، لیکن حقیقت میں خطرناک جال ہے۔ منشیات فروش انہی طریقوں کو استعمال کر کے منشیات سمگل کر رہے ہیں۔ یاد رکھیں، اگر آپ کے سامان سے منشیات برآمد ہوئی تو قانوناً اس جرم کی ذمہ دار صرف آپ ہوں گے۔ خبردار، کسی اجنبی کا سامان دوران سفر اپنے ساتھ لے جانا آپ کے لیے خطرناک ہو سکتا ہے۔
6: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا۔
4: FM 100،
6: 31 سال FM 100، آپ کی آواز۔ السلام علیکم پاکستان،
4: السلام علیکم پاکستان۔

0: It's 10:15 a.m. This time check is brought to you by Dr. Hamid General Homeo and Schwabe Germany, proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 75 remarkable years.
1: HBL Freedom Account ke saath muft IBFT, muft checkbook, muft online banking aur behtareen mobile app ki sahulat ke saath. HBL Freedom Account, jahan khwab wahan HBL.
2: जब बात आपकी सेहत की हो तो खालिस्तान बहुत अहमियत रखता है। शोबे मयार की सख्त जांच पड़ताल करता है ताकि इस बात को यकीनी बनाया जा सके कि हर दवा असली और काबिले भरोसा हो। डॉक्टर हमीद जनरल होमियो और शोबे जर्मनी पिछले 75 सालों से सेहतमंद पाकिस्तान के लिए कोशां।
1: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ मुफ्त IBFT, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां खास वहाँ HBL।
3: हायर नो क्रॉस IoT रेफ्रिजरेटर, इसकी IoT टेक्नोलॉजी फूड एक्सपायरी नोटिफिकेशन के साथ साथ आपको दे मोबाइल ऐप से कंप्लीट कंट्रोल। नो क्रॉस, नो वरीज।
4: FM 100, लाइक अस ऑन facebook.com/fm247365। FM 247365।
5: कभी सोचा है कि अब जंग की सूरत क्या है? अब जंग मैदान जंग में नहीं, हमारे जहनों में लड़ी जा रही है। अब दुश्मन की गोलियां बारूद नहीं, मालूमात है और निशाना हम सब। रियासत मुखालिफ ताकतें हमारे घरों के दरवाजे तक पहुंच चुकी हैं। टेक्नोलॉजी और इंटरनेट के पर्दे में दुश्मन छुपा बैठा है। वो ढूंढता है कमजोर लम्हे, बेरोजगार नौजवान, जरूरतमंद खानदान, फिर उनके सामने बिछाता है ख्वाब, बड़ी नौकरी, तेज दौलत, बैरून मुल्क सफर, और फिर कभी रिपोर्टर की सूरत में, कभी एनजीओ वर्कर या फ्रीलांसर बनकर उनसे वो राज निकलवाता है जो दुश्मन का रास्ता खो देते हैं, जिनसे बदमनी, खौफ और फसाद हमारी गली कूचों तक उतर आते हैं, हमें अपनी ही मट्टी के खिलाफ खड़ा कर देता है। जो आपसे मालूमात लेता है वो आपकी जात तक पहुंचता है, आपकी तस्वीरें, पहचान, फोन, सब कुछ खतरे में डाल देता है। तो याद रखिए, किसी अजनबी को अपनी कोई हसास बात ना दीजिए। कोई मशकूक चीज, कॉल या पेशकश हो, फौरन रिपोर्ट कीजिए। हसास मकामात बस अपने इदारे तक रखिए, क्योंकि हर लफ्ज, हर क्लिक, हर तस्वीर या तो हिफाजत है या खतरा। फैसला आपके हाथ में है।
0: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया।

0: It's 11:15 a.m. This time check is brought to you by Dr. Hamid General Homeo and Schwabe Germany, proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 75 remarkable years.
1: आम चीजों पर समझौता क्यों करें? शॉबे सिंगल रेमेडीज मुस्तनद जर्मन महारत के साथ तैयार करदा कुदरत के बेहतरीन नज़ा लाए हैं ताकि आपकी सेहत की बेहतरीन देखभाल हो सके. डॉक्टर हमीद जनरल होमियो और शॉबे सिंगल रेमेडीज, भरोसे, देखभाल और जर्मन महारत के 75 साल.
2: कहीं अनजाने में आप दहशतगर्दों की माली मुआवनत तो नहीं कर रहे? होशियार रहें, मुहतात रहें. अपना बैंक अकाउंट किसी दूसरे फर्द को हरगिज इस्तेमाल न करने दें और न ही किसी अनजान अकाउंट में रकम मुंतकिल करें. हुंडी, हवाला या बैंक अकाउंट के जरिए दहशतगर्दों की माली मुआवनत करने वाले अफराद के खिलाफ इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट के तहत सख्त कानूनी कार्रवाई का आगाज हो चुका है. याद रखें, दहशतगर्दों की माली मुआवनत भी दहशतगर्दी है. हुकूमत पाकिस्तान.
0: मुफाद आम्मा के लिए पैगाम हुकूमत पाकिस्तान और FM 100 कराची की जानिब से पेश किया गया.
3: FM 100 लाइक अस ऑन facebook.com/FM247365.

facebook.com/FM247365 FM247365

0: पाकिस्तान एसोसिएशन ऑफ डर्मेटोलॉजिस्ट एंड एटको लेबोरेटरीज के तावन से हर जुम्मा 12:30 से 1 मालूमाती प्रोग्राम जिसमें बात होगी स्किन कंडीशन के हवाले से। पाकिस्तान के नामवर डॉक्टर्स शिरकत करेंगे, तो सुनना न भूलें सिर्फ FM 100 पाकिस्तान पर।
1: हाय फ्रेंड्स, आई एम मिकाल ज़ुल्फ़िकार एंड टुडे आई एम नॉट स्पीकिंग टू यू एज अ पब्लिक फिगर बट एज समवन हू केयर्स अबाउट योर फ्यूचर। वी ऑल ड्रीम ऑफ सक्सेस एंड हैप्पीनेस बट ड्रग्स आर साइलेंटली डिस्ट्रॉइंग आवर ड्रीम्स, लाइव्स एंड आवर फैमिलीज। The anti-narcotics force, the ANF, is bravely fighting this battle. But they can't fight it alone. They need your help and ours. Let's fight this together. Say no to drugs and let's stand together.
2: Ye paigham hukumat e Pakistan ki janib se pesh kiya gaya.
3: पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी की जानिब से तमाम मोबाइल फोन सार्फिन को आगाह किया जाता है कि वो इस बात को यकीनी बनाएं कि उनके कंप्यूटराइज कौमी शनाख्ती कार्ड फाल होने चाहिए। याद रखें, अगर आपके जेर इस्तेमाल सिम के साथ मुंसलिक शनाख्ती कार्ड मंसूख कर दिया गया है या इसकी मियाद खत्म हो गई है या शनाख्ती कार्ड का हामिल फर्द वफात पा गया है तो आपकी मोबाइल फोन सर्विस मुअत्तल की जा सकती है। लिहाजा किसी भी जहमत से बचने के लिए मोबाइल फोन सार्फिन को चाहिए कि जिन शनाख्ती कार्ड की मियाद खत्म हो चुकी है उनकी फौरन तजदीद करवाएं। शनाख्ती कार्ड की मनसूखे से मुतालिक किसी भी मसले के हल के लिए नात्रा से रजू करें और इस बात को यकीनी बनाएं कि सिम किसी वफाशुदा फर्द के शनाख्ती कार्ड पर रजिस्टर्ड ना हो। अगर आपकी सिम किसी वफाशुदा शख्स के शनाख्ती कार्ड पर रजिस्टर्ड है तो कानूनी वारिस मुतलका कंपनी के सर्विस सेंटर मजाज फ्रेंचाइजीज पर जाकर जरूरी दस्तावेजात जमा करवा कर सिम की मलकियत अपने नाम करवा सकते हैं। शनाख्ती कार्ड की बर वक्त तजदीद मोबाइल फोन सार्फिन के तसलसल को यकीनी बनाने में मददगार साबित हो सकती है। पीटीए आपकी शनाख्त के तहफ्फुज और सार्फिन को महफूज टेलीकॉम सर्विसेज की फराहमी के लिए पुरअज़्म है। डिजिटल दुनिया में महफूज कदम पीटीए।
4: FM 24/7/365

0: करने जा रहे हैं। बहुत सारे मिसकंसेप्शन हैं आपके जो दूर होने वाले हैं बर्स के मसले पर। आज जिस प्रोग्राम के तवस्व से गुफ्तगू का सिलसिला जारी है, डॉक्टर मदिया हमारे साथ मौजूद हैं। अ कोऑपरेटिव एफर्ट बाय पाकिस्तान एसोसिएशन ऑफ डर्मेटोलॉजिस्ट एंड एडको टू रेज पब्लिक अवेयरनेस ऑन कॉमन स्किन कंडीशन, बातचीत का सिलसिला जारी है। अच्छा, क्या ये बीमारी हाथ मिलाने से भी एक शख्स से दूसरे शख्स तक मुंतकिल हो जाती है?
1: अच्छा, ये भी हमारी पब्लिक में एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन या गलतफहमी है कि अगर ऐसे मरीज जिसके हाथ में सफेद धब्बे मौजूद हों, उसे हाथ मिला लिया तो उसको मुंतकिल हो जाएगी, या हमारे पास कुछ जॉब्स ऐसी होती हैं जिन जैसे कोई खाना पकाने का काम करता है या कोई होटल में या किसी रिसेप्शन पे मौजूद है तो वो उससे हाथ मिला लिया जाएगा तो उससे सफेद धब्बे दूसरे मरीज या हाथ मिलाने वाले मरीज में इंसान में मुंतकिल हो जाएंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं है। ऐसे मरीजों के साथ हर तरह का सोशल कांटेक्ट, खाना पीना, मेल जोल, सब कुछ नॉर्मल तरीके से जारी रखा जा सकता है।
0: ओके, मतलब यानी कि ये भी एक
1: बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है।
0: ओके, ऑल राइट। अगर माँ या बाप में से किसी को ये बर्स का मसला हो तो क्या जरूरी है कि बच्चे में भी होता है?
1: अगर वालदेन में से किसी एक को भी ये मसला हो तो जरूरी नहीं है कि बच्चे में जरूर ये ट्रांसफर हो। 10 से 12-15% पेरेंट्स में अगर हो तो बच्चों में ये ट्रांसफर हो सकता है। थोड़ा सा नॉर्मल लोगों से ज्यादा, मतलब जिनमें ये बीमारी नहीं है उनसे थोड़ा सा ज्यादा रिस्क है, लेकिन ऐसा 100% नहीं है कि हमेशा ही बच्चे में ये ट्रांसफर होगा।
0: अच्छा, यानी कि मतलब मोस्ट प्रॉब्ली 100%
1: बिल्कुल भी नहीं है, बहुत कम परसेंट, लेकिन है, हम उसको डिनाई नहीं कर सकते।
0: और अगर माँ बाप दोनों में या किसी एक में भी हो तो भी रिस्क?
1: जी, क्योंकि जीन्स से भी इसका ताल्लुक है, इसकी मोड ऑफ ट्रांसमिशन जो है, इसके बहुत सारे अवामिल हैं। तो बेसिकली ये ऑटोइम्यून डिजीज है, ठीक है, जिसमें हमारी ही इम्यूनिटी हमारे जो है सेल्स के अगेंस्ट काम कर रही होती है और वो मिलानोसाइट्स जो कि पिगमेंट बनाते हैं उनको खत्म कर रही होती है। तो उसमें और फैक्टर्स भी होते हैं, कुछ एनवायरमेंटल स्ट्रेसेस से भी ये बीमारी एग्रेवेट हो जाती है या बढ़ जाती है, और जीन्स भी इसमें अपना अमल प्ले कर रही होती है।
0: ऑल राइट। अच्छा डॉक्टर, एक और ये जो सबसे मैं चाहूंगी कि आप इस पर तो जरूर रोशनी डालें, ये मिसकंसेप्शन जो सोसाइटी में कई सालों से बरसों से चलता आ रहा है, क्या मछली खाने के बाद दूध पीने से बर्स होता है?
1: अच्छा, बिल्कुल, आपने बहुत ही अच्छा सवाल करा, क्योंकि ये तो एक बहुत स्ट्रांग और रॉन्ग बिलीफ है।
0: अच्छा,
1: बिल्कुल, जो हमारा हर पेशेंट या उसका अटेंडेंट, उसके वालदेन इसी स्ट्रांग बिलीफ के साथ आते हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि मछली खाई और उसके बाद दूध पी लिया तो ये सफेद धब्बे हो गए। मरीज जो है या आम आवाम, हम दोनों ही चीजों का साथ इस्तेमाल बिल्कुल जारी रख सकते हैं। दूध, दूध से बनी हुई अशिया जिसमें चीज वगैरह हो गया, दही हो गया, या कोई भी और आइसक्रीम हो गई, कोई और मीठा हो गया जिसमें दूध मेजोरिटी में शामिल है, तो दोनों का इस्तेमाल साथ किया जा सकता है।
0: इससे
1: कोई साइंटिफिक एविडेंस नहीं है, कुछ नहीं है।
0: अच्छा।
1: फिर बहुत सारे लोग ये कहते हैं खास किस्म की मछली है, तो
0: ये बिल्कुल ऐसा ही है। लो भाई, जो ये बात हम कई सालों से बरसों से सुनते आ रहे थे और हमारा एक स्ट्रांग बिलीव था इस बात पे, आज डॉक्टर मध्य ने बताया कि ये बिल्कुल गलत बात है।
1: जी बिल्कुल।
0: ओ माय गॉड, तो प्लीज आप लोग भी अब इस मिसकंसेप्शन को दूर कर दें अपनी जिंदगानी से कि इससे जो है वो बर्स का मसला हो जाता है, तो ऐसा नहीं है। अच्छा, क्या सफेद दाग वाले मरीज से किसी खास गजा से परहेज करना चाहिए?
1: ऐसा भी बिल्कुल नहीं है। एक हमारे पब्लिक में एक मिसकॉन्सेप्शन है कि जिनको ये बीमारी है या जो इन बीमारी से अफेक्टेड है वो विटामिन सी कंटेनिंग डाइट ना लें। बहुत ज्यादा वो पूछते हैं कि हम बच्चे का, बल्कि वो बंद करके आते हैं, इनफैक्ट अफेक्टेड है तो उसका विटामिन सी कंटेनिंग फ्रूट्स हो गए, ऑरेंजेस हो गए, लेमन हो गए, या जूसेस हो गए, टमाटर बंद कर देते हैं, दही सफेद अशिया बंद कर देते हैं, जो भी आम हमारे समाज में दूध दही सफेद मौजूद है वो बंद कर देते हैं। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। विटामिन सी का अपना रोल है स्किन में, पिगमेंटेशन तो वो कम करता है, लेकिन हम जो एक जो नॉर्मल हमारा डेली रिक्वायरमेंट है हम उसके अंदर लेते हैं, तो उसमें ऐसा विटिलिगो पे कोई इफेक्ट नहीं है। इनफैक्ट विटामिन सी हमारे बहुत सारे और जल्द के हेल्पफुल है, जैसे कि वो हमें कोई चोट लग जाए उसकी हीलिंग में हेल्प करता है, हमारी स्किन की यूथफुलनेस, इलास्टिसिटी, उसका गुड लुक, उसकी हेल्दी अपेयरेंस, उसमें बहुत इम्प्रूवमेंट का उसका रोल है। तो हम इवन गम्स की हेल्थ में विटामिन सी का बहुत रोल है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि हम कोई गजा, इनफैक्ट किसी भी किस्म की गजा, बिल्कुल भी कोई साइंटिफिक एविडेंस का मौजूद नहीं है कि उसको रोक देना चाहिए ऐसे मरीजों को।
0: ओके, ऑल राइट। अच्छा, क्या बर्स का ताल्लुक कैल्शियम की कमी से होता है?
1: अच्छा, ये एक बहुत बड़ा मिसकॉन्सेप्शन है. जैसे मैंने शुरू में बताया कि एक किस्म का एक्जिमा होता है जिसको प्रियाल्बा कहते हैं, और इन मरीज

0: کی تعداد ریاست زیلبا کے مریضوں کی تعداد زیادہ ہوتی ہے, جیسے سمجھے 5% لوگ جو ہیں وہ اس کے ساتھ آ رہے ہوتے ہیں, اسپیشلی بچے. تو پیرنٹس یا مائیں بہت زیادہ ان کا اسٹرانگ بلیف ہے کہ یہ کیلشیم کی کمی ہے, تو اس میں کیلشیم کا کوئی عمل دخل نہیں ہے, نہ ہی پیٹریاسس ایلبا میں نہ ہی وٹیلیگو میں. اگر بچے میں کیلشیم کمی ہوگی تو اس کے دوسرے سمٹمس ہوں گے, بون ہیلتھ ویک ہوگی, بون کمزور ہوں گی, دانت اس کے افیکٹڈ ہوں گے, فریکچرز ہوں گے. ٹھیک ہے, تو ایسا نہیں ہے کہ اس میں کیلشیم کا کوئی عمل دخل ہے.
1: آل رائٹ, تو ایک اور ہمارا مسکنسپشن ہوا دور. اچھا ڈاکٹر, جہاں تک بات یہ ہے کہ ہم اس موضوع پر بات کر ہی رہے ہیں, ایسے بھی بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جو کہ پیدائشی, جیسے ایک طور پہ سورج مکھی بھی کہا جاتا ہے,
0: جی
1: بہت زیادہ وائٹ, تو وہ بھی یہی ایشو ہوتا ہے؟
0: نہیں, وہ ان جینیٹکلی
1: جینیٹکلی
0: وہ جینیٹک بیماری ہے جس میں شروع سے ہی جلد سفید ہوگی, بال ہلکے رنگ کے ہوں گے, براؤن ہوں گے, گولڈن ہوں گے, ان میں آنکھوں کے بھی بہت سارے مسائل ہوتے ہیں, جس میں آنکھ کی پتلی ہل رہی ہوتی ہے, آنکھ کے پتلی کا رنگ جو ہے وہ ہلکا ہوگا, تو ان مریضوں کو ان سے ملانا نہیں چاہیے, وہ ایک ڈفرنٹ بیماری.
1: اوکے, وہ ایک ڈفرنٹ چیز,
0: وہ بالکل ڈفرنٹ چیز ہے, اور وہ بھی پائی جاتی ہے بالکل.
1: اوکے, آل رائٹ,
0: وہ پیورلی جینیٹکس ہے,
1: وہ پیورلی جینیٹکس ہے. آل رائٹ, تو دیر از اے ڈفرنس بٹوین, بیکاز ہم بات کر رہے ہیں کیونکہ بہت ساری چیزوں کو ہم ایک ہی چیز سے جوڑ دیتے ہیں, یہ مسئلہ یہ ہے, یہ مسئلہ یہ.
0: جی جی, اس میں جو ہے پیدائش سے اور آنکھوں اور بالوں کو وہ شروع سے ہی متاثر کرتی. جی جی, اس میں ہمیں پورا مطلب تمام فیلڈس کے ڈاکٹر کو, آئی اسپیشلسٹ کا, ان مریضوں میں بہت آنکھوں کا خیال رکھنا پڑتا ہے, باقاعدگی سے آنکھوں کا معائنہ, جلد کا معائنہ کرانا ضروری ہے.
1: اوکے, اچھا ڈاکٹر, جہاں تک یہ وٹیلائگو کی بات چل رہی ہے, کیا یہ بیماری جو ہے وہ جان لیوا بھی ہے یا یہ کینسر کی نشانی بھی ہے؟
0: نہیں, ایسا بالکل بھی نہیں ہے فاطمہ کہ یہ اس بیماری کوئی خطرناک چیز کی علامت ہے یا کینسر کی علامت ہے. ایسے مریضوں میں عام طور پہ کوئی ایسا رسک نہیں ہوتا. نارمل پاپولیشن میں اگر ہم ان کا موازنہ کریں تو دونوں ہی بالکل ہیلدی مینٹلی اور فزیکلی فٹ ہوتے ہیں. کچھ تھوڑی سی آٹو امیون کنڈیشن, کیونکہ وٹیلیگو ایک آٹو امیون کنڈیشن ہے, تو ان مریضوں میں ڈائبٹیز یا تھائیرائڈ کی کچھ پرابلمز ہو سکتی ہیں, جو کہ اگر وہ ڈاکٹر پہ فالو کریں تو ان کا ورک اپ کریں گے اور وہ اس کے اکارڈنگ ٹریٹ کریں گے.
1: اوکے, یعنی کہ یہ سب ایک مسکنسپشن ہے,
0: بالکل
1: خاصتا کہ جان لیوا ہے. یا
0: جلد کا ایک کینسر ہوتا ہے جو سفید دھبوں کی طرح ہلکے, لیکن وہ بالکل دودھ کی طرح کے سفید نہیں ہوتے, وہ تھوڑے سے مدھم ہلکے سفید ہوتے, تو وہ ممک کرتا ہے یا اس سے مواصلت کرتا ہے, تو اس کو چیک کرا لینا چاہیے اگر ہوتا ہے تو. سفید دھبے مطلب پوائنٹ یہ ہے کہ ہمیں جب بھی کوئی دل کا دھبا محسوس ہو سفید رنگ کا, اس کو نظر انداز نہ کریں, اس سے ڈرے بھی نہ, اور ٹائملی اپنے ڈاکٹر کو فالو کریں.
1: کیونکہ اکثر اوقات یہ جو وائٹ نشان ہے, جہاں کیونکہ وائٹ اسپاٹس پر ہی ہم بات کر رہے ہیں, تو وہ اکثر اوقات آپ کے ناخنوں میں اور جلد پہ ہوتے ہیں, تو وہ جب بھی نظر آئے اسپیشلی خواتین کو, تو یہ کہا جاتا ہے کیلشیم کی کمی.
0: جی جی, آپ نے بہت اچھا پوائنٹ کرا ناخنوں والا, تو یہ بھی کیلشیم کی کمی نہیں ہے. ناخنوں میں وائٹ اسپاٹ جو بچوں کے عام طور پہ ہو جاتے ہیں, وہ عام طور پہ جو بچے نیل بائٹنگ کرتے ہیں یا ٹراما ہو جاتا ہے ان میں ہوتے ہیں. یا بعض اوقات اگر پورا ناخن سفید ہو گیا ہے یا اس میں اور بینڈز بن گئے ناخنوں میں, تو ہمیں پھر ان مریضوں کو لیور ڈیزیزز کے لیے, کوئی گردوں کی ڈیزیزز کے لیے فالو کرنا پڑتا ہے, ورک اپ کرنا پڑتا ہے, تو کیونکہ ان حالات میں ہو سکتے ہیں. یا پروٹین ڈیفیشنسی, جو لوگ گوشت نہیں کھائیں یا ان کا لیور کمپرومائز ہو, تو اس میں یہ سفید ناخن ہو سکتے ہیں.
1: اوکے, اور ہم یہ کیلشیم سمجھتے ہیں,
0: ہر چیز کیلشیم کی
1: کمی. صحیح بات, ایگزیکٹلی, بالکل ٹھیک ہے. تو یہ دیکھ رہے ہیں آپ لوگ, آج ڈاکٹر مدھیا کے توسط سے ہم کتنی سارے مسکنسپشنز کو دور کر رہے ہیں, کیونکہ یہ وائٹ اسپاٹس پر ہی ہماری بات چل رہی ہے, تو ہمارے جسم کے کافی حصوں میں ہمیں یہ اسپاٹس نظر آتے ہیں, اور کسی نہ کسی کو ہم نے کسی ریزن سے سمجھا ہوا کہ یہ اس ریزن کی وجہ سے ہے, اس ریزن کی وجہ سے, لیکن ایکچولی میں وہ کیا چیز ہے, اس لیے آپ ضرور ڈاکٹر سے رجوع کریں. اچھا ڈاکٹر, جہاں تک بات وائٹ اسپاٹس کی ہے, ایک عام آدمی جب بھی کوئی ایسی بیماری ہے کسی چیز کا, وہ نہیں سمجھ نہیں پاتا کہ اسے کس کو دکھانا چاہیے, تو آپ یہ بھی ہمیں بتائیں کہ اگر ایسا کوئی اسپاٹ ہائی لائٹ ہوتا ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ ڈاکٹر سے کنسلٹ کریں, تو آپ کو کس کے پاس جائیں؟
0: آپ بالکل ڈرمیٹولوجسٹ کے پاس آئیں, وہی اس کو ڈائگنوز کر سکے گا.
1: डर्माटोलॉजिस्ट
0: जी जी
1: डर्माटोलॉजिस्ट से आप जरूर रजू करें अगर आप भी कोई अपने जिस्म में ऐसा कोई दाग देख रहे हैं और आई एम श्योर कि अभी आप
0: जल्द
1: कर ही रहे होंगे
0: पॉइंट ये है कि जल्दी दिखाएं
1: बिल्कुल ये एक बड़ी जरूरी चीज होती है कि आप जो है वो इन चीजों को जरूर हाईलाइट करें और ध्यान रखें ताकि ये जो है वो अच्छे से आप मैनेज कर सकें। ऑल राइट, अच्छा डॉक्टर बातों का सिलसिला हमारा जारी है, हम आपसे पूछ रहे हैं तो मैं ये भी जानना चाहूंगी इसी के साथ साथ कि कुछ मरीज समझते हैं कि इलाज शुरू करने से सफेद दाग तेजी से फैलने लगते हैं, क्या ये बात दुरुस्त है?
0: नहीं देखिए, ये भी एक मिसकंसेप्शन है, गलत फहमी है कि अगर एक सफेद धब्बा हो गया और वो डॉक्टर के पास चले जाएंगे तो वो डॉक्टर जो दवाई देंगे उससे फैल जाएंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। कभी कभार बाज औकात ये होता है क्योंकि जब मरीज हमारे पास शुरू में आता है तो वो डिजीज का थोड़ा एक्टिव फेज होता है, तो डिजीज भी उसमें एक्टिव होती है और अग्रेसिव होती है और ज्यादा उसको मरीज नोटिस करता है, तो ऐसा जरूर हो सकता है कि कहीं एक जगह पे धब्बा आया और वो उसी दौरान कहीं और बनना शुरू हो गया, तो वो ज्यादा जरूरी है कि वो और इलाज से उसमें तसलसल बरकरार रखे, ट्रीटमेंट कंटिन्यू करे, क्योंकि उसी वक्त हम बेस्ट ट्रीटमेंट बीमारी को होल्ड कर सकते हैं, रोक सकते हैं, वो बीमारी उस वक्त ये एक्टिव फेज में होती है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि दवाई के इस्तेमाल से धब्बे बढ़ रहे हैं।
1: हाँ ये हम लोगों को सही बात है, बहुत सारे मिसकंसेप्शन हैं जो लोग बिलीव करते हैं, इस वजह से लोग शायद ट्रीट भी नहीं करा रहे,
0: बिल्कुल हमारे पास नहीं आते कि डॉक्टर की दवाई लेंगे तो और बढ़ जाएगा, हालांकि ये ऐसा बिल्कुल नहीं है, ऐसी कोई दवाई नहीं है जिसकी लगाने से या खाने से या इस्तेमाल से ये सफेद धब्बे बढ़ जाएं।
1: बिल्कुल सही, आज
0: वो डिजीज अपना खुद कोर्स ले रही होती है, डिजीज थोड़ी एक्टिव होती है शुरू में, तो लेकिन जो नया धब्बा बने कोई प्रॉब्लम नहीं, उसमें भी इलाज शुरू करें, डॉक्टर से रुजू करें और दिखाएं, ट्रीटमेंट को मॉडिफाई किया जाएगा, ट्रीटमेंट को अब स्टेप अप करा जाएगा, थोड़ी सी हो सकता है दवाओं में रद्दोबदल किया जाए, लेकिन उससे ये मत समझें कि दवाई की वजह से ये धब्बे कहीं और बन गए।
1: बिल्कुल सही बात है, अभी आज व्हाइट स्पॉट्स पर हमने इतनी सारी बात की है बिकॉज आज हमारा टॉपिक है द फैक्ट्स एंड फॉल्सहुड ऑफ व्हाइट स्पॉट्स, और डॉक्टर मदिया से आज हमने बहुत सारी मालूमात हासिल की, इसके साथ साथ मुझे भी एक व्हाइट स्पॉट याद आ गया, मैंने कहीं देखा है आपको शो के बाद
0: हम
1: बिल्कुल ऐसे ही, क्योंकि आज हमने व्हाइट स्पॉट्स पर बहुत सारी बातें कर रहे हैं और आपके मिसकंसेप्शन को जो है
0: व्हाइट स्पॉट पे कहा ना चोट वो बहुत है कि हमें कोई दाना रहा, कोई चोट रहा, कोई बल्कि इनफैक्ट कभी कोई स्किन प्रॉब्लम रही तो उसके बाद भी, या कहीं जल गया किचन में काम करते हुए, किसी को भी हो सकता
1: बिल्कुल
0: है, बच्चे गिर गए
1: बिल्कुल
0: तो
1: ऐसा ही,
0: उसके बाद भी वो जगह से मेलानोसाइट्स खत्म हो सकते हैं, तो चोट के बाद भी हो सकता है
1: लेकिन आप हर चीज को हम इससे
0: ना समझें,
1: हमें वाकई में जिस्म पर कहीं भी व्हाइट स्पॉट नजर आए तो हमें यही एक खौफ होता है, लेकिन ऐसा नहीं। अच्छा डॉक्टर ये भी मुझे बताइएगा, जहां तक हम बात कर रहे हैं विटिलाइगो के हवाले से, बर्स के हवाले से, तो अगर बात की जाए मैरिज के हवाले से, तो अगर किसी मर्द को है या किसी खवातीन को है तो क्या, अगर दोनों में से किसी एक को है तो उन्हें शादी करनी चाहिए, इससे कोई बच्चे पर तो असर नहीं पड़ता?
0: देखिए इसमें जेनेटिक्स तो है, ट्रांसमिट तो हो सकता है, वो जीन्स ट्रांसमिट वो अपने ऑफस्प्रिंग में बच्चों में कर सकते हैं, लेकिन वो 10-20% है, तो ऐसा नहीं है। अदरवाइज अगर विटिलिगो का मरीज है तो वो मेंटली फिजिकली हर तरह से बिल्कुल फिट है, तो शादी की जा सकती है, इसमें ऐसा कुछ मना नहीं है, बिल्कुल नहीं।
1: ओके बिल्कुल ठीक है, ये भी एक बात होती है कि अक्सर औकात अगर कोई ऐसा नजर में आए तो हमें ये टेंशन होती है कि पता नहीं आगे क्या है, लेकिन हकीकत है कि इससे बेसिकली कोई फिजिकल इलनेस नहीं है,
0: फिजिकल भी नहीं, मेंटल भी नहीं।
1: बिल्कुल ऑल राइट, बिल्कुल ठीक है, आप सब सुन रहे हैं।
0: एक्सेप्टेंस की जरूरत है इस बीमारी में, एक्चुअली
1: बिल्कुल
0: एक्सेप्टेंस, इक्वालिटी, क्योंकि ये मरीज इक्वल टू अदर जो नहीं अफेक्टेड उनकी तरह है।
1: बिल्कुल ऐसी बात है, ये
0: कॉस्मेटिक थोड़ा बहुत है लेकिन वो भी हम सबके मिलजुल के सपोर्ट के साथ इमोशनली साइकोलॉजिकली उनको इक्वालिटी दें, और ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई उसमें कंटेजियस नहीं है।
1: हाँ सही बात है, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑल राइट, आप सब सुन रहे हैं आप जो प्रोग्राम डिमिस्टिफाई द फैक्ट्स एंड फॉल्सहुड ऑफ व्हाइट स्पॉट्स, डॉक्टर मदिया हमारे साथ मौजूद हैं, अ कोऑपरेटिव एफर्ट बाय पाकिस्तान एसोसिएशन ऑफ डर्माटोलॉजिस्ट एंड एडको टू रेज पब्लिक अवेयरनेस ऑन कॉमन स्किन कंडीशंस, इस पर बात चल रही है। अच्छा डॉक्टर, जहां तक बात हम कर रहे हैं विटिलाइगो के हवाले से, बर्स के हवाले से, तो क्या एक सर्टन एज में आके ये होता है कि आपकी जो बॉडी है वो ऑटोमेटिकली एक कलर को इख्तियार कर लेती है, यानी कि बगैर किसी ट्रीटमेंट के वो ऑटोमेटिक ऑटोमेटिकली व्हाइट हो जाता है, इट विल टेक टाइम, बट एक्चुअली में ऐसा होता है क्या?
0: देखिए जरूरी नहीं है कि हर मरीज की बॉडी पूरी टर्न हो जाए, ठीक है, वो भी कुछ फीसद मरीज विटिलिगो के 10-20 यूनिवर्सल या जनरलाइज विटिलिगो जिसमें बॉडी का 80% या 90% तकरीबन हिस्सा सफेद हो जाता है, लेकिन होता है, लेकिन हर मरीज में ऐसा बिल्कुल नहीं है और कोई इसकी एज डिफाइन नहीं है.
1: एज डिफाइन
0: जी okay. क्योंकि वो हर मरीज एज ग्रुप के लोगों में अफेक्ट करती है, तो कोई टाइम डिफाइन नहीं है, लेकिन हो सकती है,
1: हो सकता है, लेकिन इफ पे सिचुएशन,
0: लेकिन उस सिचुएशन में अगर वो छोटे चंद ब्राउन स्पॉट्स बच जाए तो फिर हम उनका इलाज करते हैं.
1: ओके ओके, ताकि सारा पूरा एक ही जैसा,
0: पूरा एक जैसा हो जाए.
1: ओके अच्छा डॉक्टर, इसी के साथ साथ मुझे बताएगा क्या कोई घरेलू नुस्खे मौजूद हैं और जो इस बीमारी में ट्रीट किए जा सकते हैं?
0: नहीं, कोई ऐसा साइंटिफिक एविडेंस नहीं है किसी घरेलू टोटके का कि जो है उसको इस्तेमाल किया जाए और वो सफेद धब्बे चले जाएंगे. इनफैक्ट ये जरूर हो सकता है कि कोई घरेलू टोटका या कुछ भी लगा लिया उसके बाद उससे एलर्जी हो गई, उससे उल्टा रिएक्शन हो गया, तो उस जगह पे और दूसरा कोई मसला बन सकता है.
1: लेकिन वैसे ऐसा कुछ घरेलू नुस्खा मौजूद नहीं है.
0: जी बिल्कुल
1: बिल्कुल ठीक है, क्योंकि ज्यादातर लोगों की कोशिश ये होती है कि घरेलू नुस्खे और टोटके पर बिलीव बड़ा होता है, ये लगा
0: चाहते हैं कि डॉक्टर तक ना जाएगा जितना डॉक्टर को अवॉइड करती
1: है, क्योंकि ऐसी बहुत सारी चीजें जैसे फिटकरी का लोगों का एक बिलीव है कि वो कहीं भी लगा लें जो भी स्पॉट्स हैं
0: फिर वो उससे रिएक्शन लेकर हमारे पास आते हैं.
1: सही बात है,
0: बहुत सारे मोल्स होते हैं उनपे कुछ ना कुछ लगा लेते हैं, टूथपेस्ट या फिटकरी जैसे आपने कहा,
1: हाँ,
0: या बेकिंग सोडा.
1: बेकिंग सोडा यस. और एक तो मतलब क्योंकि अभी बात चली रही है, ऑब्वियसली आप डर्मेटोलॉजिस्ट हैं, मैं ये थोड़ा सा ऑफ द टॉपिक हम जा रहे हैं, लेकिन फिर भी ये टूथपेस्ट, बेकिंग सोडा और लेमन, ये जो सब एक मिला के कोई रिएक्शन बना के लगाते हैं,
0: वो कुछ ऐसा रिएक्शन मरीज ये आपको बता सकते हैं. हम तो इसके साइड इफेक्ट देखते हैं, क्योंकि या तो वो बर्न हो जाता है जगह पे, जल जाता है, और फिर उसके बाद पिगमेंटेशन या हाइपर पिगमेंट, यही धब्बे बन गए उनको हम ट्रीट कर रहे होते हैं, या इन्फेक्ट हो जाती है वो जगह.
1: ओके,
0: मरीज ने मोल के नीचे लगाया, मोल तो वहीं का रहा, उसके आसपास की जल बर्न हो गई, उसमें इन्फेक्शन हो गया, तो फिर वो हमारे पास आ,
1: यानी कि ये एसिडिक चीजों को ना लगाएं भाई, जो हम एक मिक्सचर बना लेते हैं,
0: ऐसा नहीं,
1: लीमू और टूथपेस्ट और बेकिंग सोडा डालकर
0: और चेहरे पे कर लेते हैं,
1: ये
0: तो चेहरे के साथ ऐसा रिस्क नहीं लेना चाहिए.
1: बिल्कुल सही है, ये थोड़ा सा ऑफ द टॉपिक है, लेकिन मैंने कहा नहीं, हम डॉक्टर से जरूर पूछेंगे, बिकॉज ये हमारा एक बड़ा स्ट्रांग बिलीव है, जले हुए पे भी टूथपेस्ट लगा लेना, मतलब टूथपेस्ट तो मतलब हम दांतों से ज्यादा चेहरे पे और हाथों पर लगा रहे होते हैं ट्रीटमेंट के लिए, बट इसका भी ऐसा कोई फायदा नहीं है, तो मिसकंसेप्शन पर बात चल रही है हमारी. अच्छा डॉक्टर मुझे बताइएगा, अगर जिल्द पर सफेद दाग बन जाए तो क्या इलाज मुमकिन है? मतलब इलाज मुमकिन इन दिस सेंस मैं जानना चाहूंगी कि इसका मुकम्मल तौर पर खात्मा किया जा सकता है, या ये एक दफा हो गए तो अब जब तक ये खुद ठीक नहीं होते ये ठीक नहीं होंगे?
0: नहीं नहीं, इसका ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ये बिल्कुल काबिल इलाज मर्ज है, और इसके लिए बहुत सारे मेथड्स ऑफ ट्रीटमेंट हैं, जिसमें दवाएं भी हैं, सर्जिकल भी है, कुछ एहतियातें भी हैं, तो बिल्कुल ये ट्रीटेबल बीमारी है.
1: ट्रीटेबल है, ऑल राइट,
0: लेकिन उसको ट्रीटमेंट मुसलसल तरीके से करना चाहिए, तसलसल के साथ करना चाहिए, जो दवा दी गई है उसको टाइम से लगाना चाहिए, डॉक्टर के पास फॉलो अप टाइमली होना चाहिए,
1: ये
0: जरूरी है,
1: ये ना हो कि हम चाहें कि
0: एक दफा में, मतलब एक विजिट पे, पहले विजिट पे वो समझे पेशेंट के हम ठीक हो जाएंगे और अगली दफा जाना ना पड़े, तो इस चीज से आप ना समझे, इससे बचे और फॉलो करें अपने डॉक्टर की हिदायत को.
1: बिल्कुल ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि हम चाह रहे होते हैं कि हम जो भी ट्रीटमेंट करा रहे हैं ना वो विद इन डेज हमें ठीक कर दे, लाइक समटाइम्स तो हमारी कोशिश होती है कि बस एक हफ्ते का टाइम है हमारे पास इसमें सब कुछ.
0: नहीं नहीं, ऐसा नहीं है,
1: हाँ.
0: मतलब ये कुछ बीमारियां थोड़ा लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट आती है, तो एटलीस्ट आपने डॉक्टर को फॉलो करना है फॉर 3 to 6 months, ये भी बहुत जरूरी है.
1: ओके,
0: ये कुछ ऐसी बीमारियों में से है जो कि लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट इसको रिक्वायर्ड है, तो आप टाइमली डॉक्टर को फॉलो करें, उनकी हिदायत पे फॉलो करें, इंशाल्लाह ठीक होगी.
1: बिल्कुल इंशाल्लाह जरूर, तो ट्रीटेबल डिजीज है तो बिल्कुल आप इसको ट्रीट करवा सकते हैं. अच्छा डॉक्टर, क्या बर्थ के मरीज को किसी खास एहतियात की जरूरत होती है?
0: एज सच उसको कोई एहतियात की जरूरत नहीं होती, लेकिन सन एक्सपोजर, धूप से जाने से पहले वो सनब्लॉक का इस्तेमाल करे, फिजिकल प्रोटेक्शन करे, टोपी, छतरी, फुल स्लीव्स, इन सब चीजों का इस्तेमाल करे. इसके अलावा चोट और इनसे बचे, जैसे जलना हो गया, कटना हो गया, क्योंकि बाज़ औक़ात उन जगहों पर सफेद धब्बे बन जाते हैं जहां हमें चोट लगे या कोई कट डेवलप हो जाए या कहीं जल जाए, तो बस ये थोड़ी छोटी एहतियातें हैं बस, और तो कोई खास एहतियात नहीं है. बाकी पेशेंट बिल्कुल आपका नॉर्मल है, फिट है,
1: हर तरह से ये बात बिल्कुल ठीक है। ये कुछ एहतियात हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये एहतियात तो डॉक्टर वैसे भी सभी के लिए इम्पोर्टेंट है कि नया करें ऐसा कुछ भी।
0: हाँ।
1: लेकिन डॉक्टर एज कंपैरिजन, क्योंकि अभी आपने बताया कि फिजिकली और मेंटली दे आर वेरी नाइस अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल ठीक ठाक है, ऑब्वियसली हम जैसे ही है, चीज नहीं है, बस ये एक बात है। अच्छा, तो डॉक्टर ये भी आप मुझे बताइएगा कि जैसे अगर हम इन पेशेंट्स की बात करें और आम लोगों की, तो क्या इनकी स्किन जो है वो थोड़ी कम हेल्दी होती है, अनहेल्दी होती है, इसलिए उन्हें जरा थोड़ा एहतियात करना
0: चाहिए? क्योंकि उनमें पिगमेंट नहीं होता ना, अल्लाह ताला ने जो हमें कलर दिया है वो हमें धूप की शौ से रेस से बचाता है, तो उन जगह पे अगर वो लिमिटेड पैचेस हैं तो ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन थोड़ा अगर ज्यादा हिस्सा सरफेस एरिया बॉडी का मुतासर है तो सन प्रोटेक्शन बहुत लाजमी है, क्योंकि वहां सन बर्न के चांसेस हैं, जैसे मरीज को उधर सुर्खी आ सकती है, जलन हो सकती है, या कभी कभार छाला बन सकता है, ठीक है, और सन प्रोटेक्शन जरूरी बेहद है।
1: सन, बिल्कुल सही, ये तो वैसे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अच्छा, क्या ये बात सच है कि बर्स का इलाज के लिए सिर्फ स्टेरॉइड्स ही मुमकिन है?
0: नहीं, ये भी बहुत बड़ा मिसकॉन्सेप्शन है कि हम कभी जो मरीज आ भी जाते हैं उनको थोड़ा सा ये होता है कि बस डॉक्टर स्टेरॉइड्स ही देंगे। देखिए, बीमारी जब मरीज को होती है तो डॉक्टर उसकी उम्र, उसके जिल्द का वो हिस्सा जिसपे वो सफेद धब्बे आया, वो चेहरे की जिल्द पर हैं, वो जिस्म की जिल्द पर हैं, या वो हाथों पांव की जिल्द पर हैं, ये नोटिस करता है, फिर वो ये देखते हैं कि कितना हिस्सा इससे मुतासर है, तो ट्रीटमेंट उससे मॉडिफाई करी जाती है। स्टेरॉइड्स इसका एक अहम जज्व है ट्रीटमेंट का, और स्टेरॉइड्स अकॉर्डिंग टू द डोज, अकॉर्डिंग टू द एज, अकॉर्डिंग टू द स्किन, जहां वो है धब्बा चेहरे पर है तो उसकी स्ट्रेंथ मॉनिटर करी जाएगी, उसको टाइमली दिया जाएगा, और ऐसा नहीं है कि स्टीरॉयड ही एक वाहिद हल है। स्टीरॉयड के अलावा बहुत सारी क्रीम्स भी मौजूद हैं जो कि सफेद धब्बों के इलाज के लिए दी जाती हैं। इसके अलावा दवाएं भी बेहद मौजूद हैं, और आजकल के दौर में हमारे पास बहुत एडवांसमेंट है। इसके अलावा बहुत एक इफेक्टिव हल फोटोथेरेपी है जिसमें लाइट से इलाज करा जाता है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि सिर्फ स्टीरॉयड डॉक्टर के पास जाएंगे और उसने स्टीरॉयडल क्रीम देनी है या खाने की स्टीरॉयड देनी है तो वो ही काबिले मतलब एक ट्रीटमेंट ऑप्शन है, ऐसा बिल्कुल नहीं है।
1: ऑल राइट, बिल्कुल ठीक है जी। आप सब सुन रहे हैं प्रोग्राम जहां पर हम बात कर रहे हैं डिमिस्टिफाई द फैक्ट्स एंड फॉल्सहुड ऑफ व्हाइट स्पॉट्स, और अ कोऑपरेटिव एफर्ट बाय पाकिस्तान एसोसिएशन ऑफ डर्मेटोलॉजिस्ट एंड एटको टू रेज पब्लिक अवेयरनेस ऑन कॉमन स्किन कंडीशंस। डॉक्टर मदिया हमारे साथ मौजूद हैं और आप तक बहुत सारी मालूमात फरहाम कर रही हैं। अच्छा डॉक्टर, मुझे ये भी बताइएगा, अभी हमने बात की तो ये जो एक मछली और दूध वाली बात आपने कहा कि ये सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन है, ऐसा कुछ नहीं है। अब बेसिकली अगर हम बात करें तो इसकी असल वजह क्या है, ये हो क्यों जाता है?
0: जैसे हमने शुरू में बताया, ये एक ऑटोइम्यून डिजीज है जो खुद ब खुद किसी भी वक्त हमारा इम्यून सिस्टम, जो हमारा एक एहतियात का अल्लाह ताला ने जरिया बनाया है, जो एक प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है, जो हमें आम नजला खांसी बीमारियों, छोटी मोटी या बड़ी बीमारियों से बचाता है, वही हमारे सेल्स के अगेंस्ट हो जाता है। तो बस वो उसकी हाइपर एक्टिविटी है, तो उसको हमें सप्रेस करना होता है दवाओं के जरिए, और कुछ एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं जैसे स्ट्रेसेस होते हैं वो इसको एग्रेवेट कर देंगे, ठीक है, और जेनेटिक्स उसका भी अमल है इसमें, इस बीमारी में। तो इट्स अ, हम कहते हैं इसको मल्टी फैक्टोरियल डिजीज,
1: यानी कि स्ट्रेस और जहनी दबाव भी।
0: हाँ, इसमें डाइट कोई चीज नहीं होती, ठीक है, ये समझना, और एहतियात में धूप से और चोट लगने या जलने, इस तरह की एहतियातें, बाकी अदरवाइज किसी किस्म की एहतियात की जरूरत नहीं है।
1: ओके, ऑल राइट। अच्छा, क्या ये मर्दों और औरतों में बराबर होता है या किसी एक में शरारत?
0: जी जी, नहीं नहीं, आमतौर पर इसका तनासब मर्दों और खवातीन दोनों में ही बराबर है।
1: बिल्कुल ठीक है। अच्छा डॉक्टर, इसी के साथ मुझे बताएगा कि इसकी तशखीस कैसे की जाती है, क्या कोई स्पेसिफिक टेस्ट है जो कराना जरूरी होता है?
0: जैसे आप डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाएं, देखिए ये सफेद धब्बे बिल्कुल दूध की तरह सफेद होते हैं, तो क्लिनिकल डायग्नोसिस आराम से हो जाती है। बहुत कम केसेस में ऐसा होता है कि हम किसी दूसरी बीमारी से उसको मिला रहे होते हैं, लेकिन हमारे पास इसका भी तरीका, एक खास किस्म की लाइट होती है जिसको वुड्स लैम्प कहते हैं, उसके अगर हम मरीज का ये सफेद धब्बा मुआयना करते हैं तो उससे भी हमें बहुत अच्छा क्लू मिल जाता है। तो बेसिकली ये क्लिनिकल डायग्नोसिस है,
1: क्लिनिकल डायग्नोसिस।
0: तशखीस करने में कोई दुश्वारी हमें महसूस नहीं होती आमतौर पे,
1: यानी कि कोई ऐसा स्पेसिफिक टेस्ट मौजूद नहीं है जो आप कराएं और फिर आप
0: टेस्ट आप करा सकते हैं अगर मरीज को थोड़ा शुभ स्किन बायोप्सी, जरूरत ही नहीं पड़ती, हमें जरूरत नहीं पड़ती इस बीमारी के लिए आमतौर पे।
1: ओके, तो इससे बहुत बेहतर है कि आप डायरेक्ट डर्मेटोलॉजिस्ट,
0: क्योंकि इसका जो सफेद रंग है वो बाकी जो सफेद, इससे जो मिलती जुलती बीमारियां उनसे काफी डिफरेंट होता है। okay. और उसमें ना कोई जलन होती है ना कोई खुश्की होती है ना और कोई चेंजेस होती हैं, तो वो इजिली हम डायग्नोस कर सकते हैं.
1: ऑल राइट, तो इससे इट्स फार बेटर देन कि आप डर्माटोलॉजिस्ट से रिजू करें. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. बिल्कुल, अगर आप भी कोई ऐसा व्हाइट स्पॉट महसूस कर रहे हैं या देख रहे हैं, आई एम श्योर कि इस प्रोग्राम के बाद सब लोग अपने आप को जरूर चेक करे होंगे कि कहां का व्हाइट स्पॉट है. और ये अच्छी बात है, बिल्कुल आप लोग अपना ख्याल रखें. और जितना अच्छा है कि आप मर्ज को फौरन पकड़ लें और डॉक्टर से रिजू कर लें, तो इसमें आप ही की भलाई है. तो बिल्कुल जरूर आपने फॉलो करना है इसे. और हमने आज इस पर बात भी की है कि क्या ये ठीक हो सकता है पूरी तरीके से. तो डॉक्टर, ये आप फिर एक और दफा में बताएं.
0: बिल्कुल, ये ट्रीटेबल बीमारी है, इसका इलाज मुमकिन है और बिल्कुल मरीज सही ठीक भी हो जाते हैं. अच्छा, तो ऐसा नहीं है कि हम ये मिसकॉन्सेप्ट लेकर अपने जहन में रखें कि हम डॉक्टर के पास ही ना जाएं, कि हम कोशिश ही ना करें उसको सही करो ट्रीटमेंट की.
1: अच्छा डॉक्टर, ठीक कराने के बाद क्या दोबारा भी हो सकता है?
0: बिल्कुल हो सकता है, कुछ सालों बाद या कुछ महीनों बाद ऐसा हो सकता है कि सफेद धब्बे कहीं और बने या उसी जगह पे बने, लेकिन फिर वही बात, वो अगेन ट्रीटेबल है. okay. उसके लिए दोबारा डॉक्टर से प्रॉपर ट्रीटमेंट करवानी चाहिए. okay. डॉक्टर से रुझू करना चाहिए.
1: यानी कि कोई मसले की बात नहीं है कि अगर खुदा ना खास्ता ये दोबारा भी हो जाए तो
0: जी जी
1: ठीक हो
0: सकता. बिल्कुल ठीक.
1: ऑल राइट, ये भी एक इम्पॉर्टेंट बात थी. हमने कहा चलो जी ठीक, डॉक्टर से पता कर लेते हैं इस हवाले से. क्या बच्चों और बड़ों दोनों में इलाज में कोई फर्क होता है?
0: वही मैंने कहा, उम्र देखकर हम बिल्कुल ट्रीटमेंट मॉडिफाई करते हैं. बच्चों की ट्रीटमेंट ऑब्वियसली हम एडल्ट से डिफरेंट रखते हैं.
1: बिल्कुल ऑब्वियसली, अब ये तो
0: बच्चों की जल्द और एडल्ट जल्द में फर्क है और वो ग्रोइंग एज में होते हैं, तो हमें सब चीजों को होलिस्टिकली देखना होता है.
1: बिल्कुल, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि बच्चों और बड़ों में फर्क तो होता है. अच्छा डॉक्टर, वैसे तो आज आपने इस प्रोग्राम के तवज्जो से बहुत सी मालूमात हम सब लोगों तक फरहम की, इसी के साथ साथ क्या कोई आप मैसेज देना चाहती हैं?
0: बिल्कुल, ये मैसेज है कि ऐसे मरीज जिस किसी भी किस्म का सफेद या हल्के रंग का धब्बा अपने जिल्द पे महसूस करें, तो उसको मुस्तैद डर्माटोलॉजिस्ट को आके जरूर दिखाएं और उसकी प्रॉपर तशखीस कराएं, फिर उसके अकॉर्डिंग उसके इलाज पर इलाज करें और फॉलोअप करें. और आम आवाम के लिए, आगाही के लिए, कि ये बिल्कुल कंटेजियस नहीं है और ये मरीज से हर किस्म का सोशल कॉन्टैक्ट रखा जा सकता है, इनके साथ खाया पिया जा सकता है, इनसे हाथ मिलाया जा सकता है.
1: बिल्कुल ठीक है. थैंक यू सो वेरी मच फॉर योर टाइम. इट वाज वेरी नाइस टाइम विद यू.
0: आपका भी बहुत शुक्रिया. थैंक यू सो मच.
1: आप सब सुन रहे थे ये प्रोग्राम पाकिस्तान एसोसिएशन ऑफ डर्माटोलॉजिस्ट और एडको ग्रुप के तावन से पेश किया जा रहा था. हमें दीजिए इजाजत. अल्लाह हाफिज एवरीवन.
0: अल्लाह हाफिज. अल्लाह.
2: FM 100 टाइम चेक. इट्स 1 PM.

FM 100 पर आप सुन रहे हैं जुमतुल मुबारक की खुसूसी नशरियात। It's 1:15 PM. This time check is brought to you by Dr. Hamid General Homeo and Schwabe Germany, proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 75 remarkable years. FM 100 पर आप सुन रहे हैं जुमतुल मुबारक की खुसूसी नशरियात।

تراصوا واعتدلوا، أقيموا صفوفكم ولا تختلفوا،

سمع الله لمن حمده.

0: FM 100 पर आप सुन रहे हैं जुमतुल मुबारक की खुसूसी नशरियात।
1: It's 2:15 PM. This time check is brought to you by Dr. Hamid General Homeo and Schwabe Germany, proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 75 remarkable years.
2: महरारा देखभाल में फितरत परवान चढ़ती है। शॉबी सिंगल रेमेडीज मखसूस हर्बल फार्म्स और नबताती बागा से हासिल की जाती हैं, ताकि आपको ऐसा मयार मिले जिस पर आप मुकम्मल भरोसा कर सकें। डॉक्टर हमीद जनरल होमियो और शॉबी जर्मनी के पाकिस्तान में 75 साल सिर्फ सेहतमंद पाकिस्तान के नाम।
1: This program is brought to you by
3: Higher Kan Naya No Frost IoT Refrigerator Twin Inverter Technology जिससे मिले मैक्सिमम कूलिंग और एनर्जी सेविंग। नो फ्रॉस्ट नो वरीज।
4: अभी राजा उस्ताद आ जाएगा, फिर मुझे कमरे में ले जाकर गलत तरीके से हाथ लगाएगा और किसी को बताने से भी मना करेगा।
5: हमारे माशरे में जिनसी बदसलूकी के वाकयात सिर्फ लड़कियों के साथ ही नहीं होते, बल्कि लड़के भी इसका शिकार होते हैं। लड़के और लड़कियों दोनों की हिफाजत का ख्याल रखें, दोनों को समझाएं, चाहे अपना हो या पराया। अगर कोई इनकी मर्जी के खिलाफ इन्हें छुए तो आपको फौरन बताएं। जिनसी बदसलूकी के बचाव के लिए बच्चों में अपनी हिफाजत करने की समझ बूझ पैदा करें। पाकिस्तान का आईन और कानून हर बच्चे को जिस्मानी और नफसियाती हक फराहम करता है। तहफ्फुज हर बच्चे का हक है, आए इसे यकीनी बनाएं। मजीद मालूमात और मशवरे के लिए हेल्पलाइन 1099 पे कॉल करें। वजारत इंसानी हुकूक, हुकूमत पाकिस्तान।
0: मुफादे आम्मा के लिए पैगाम हुकूमत पाकिस्तान और FM 100 कराची की जानिब से पेश किया गया।
6: कभी सोचा है कि अब जंग की सूरत क्या है? अब जंग मैदान जंग में नहीं, हमारे जहनों में लड़ी जा रही है। अब दुश्मन की गोलियां बारूद नहीं, मालूमात है और निशाना हम सब। रियासत मुखालिफ ताकतें हमारे घरों के दरवाजे तक पहुंच चुकी हैं। टेक्नोलॉजी और इंटरनेट के पर्दे में दुश्मन छुपा बैठा है। वो ढूंढता है कमजोर लम्हे, बेरोजगार नौजवान, जरूरतमंद खानदान, फिर उनके सामने बिछाता है ख्वाब, बड़ी नौकरी, तेज दौलत, बैरून मुल्क सफर, और फिर कभी रिपोर्टर की सूरत में, कभी एनजीओ वर्कर या फ्रीलांसर बनकर उनसे वो राज निकलवाता है जो दुश्मन का रास्ता खो देते हैं, जिनसे बदमनी, खौफ और फसाद हमारी गली कूचों तक उतर आते हैं, हमें अपनी ही मट्टी के खिलाफ खड़ा कर देता है। जो आपसे मालूमात लेता है वो आपकी जात तक पहुंचता है, आपकी तस्वीरें, पहचान, फोन, सब कुछ खतरे में डाल देता है। तो याद रखिए, किसी अजनबी को अपनी कोई हसास बात ना दीजिए। कोई मशकूक चीज, कॉल या पेशकश हो, फौरन रिपोर्ट कीजिए। हसास मकामात बस अपने इदारे तक रखिए, क्योंकि हर लफ्ज, हर क्लिक, हर तस्वीर या तो हिफाजत है या खतरा। फैसला आपके हाथ में है।
0: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया।
7: गली मोहल्लों में सफाई का खास ख्याल रखें, कहीं पर पानी खड़ा ना होने दें। डेंगू जानलेवा मर्ज है, इलाज से बेहतर एहतियात है। दिस पब्लिक सर्विस मैसेज इज ब्रॉट टू यू बाय FM 100।
8: facebook.com/fm247365 FM 247365।
9: आप सुन रहे हैं FM 100 पर जुमतुल मुबारक की खुसूसी नशरियात।

0: It's 3:15 p.m. This time check is brought to you by Dr. Hamid General Homeo and Schwabe Germany, proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 75 remarkable years.
1: आम चीजों पर समझौता क्यों करें? शॉबे सिंगल रेमेडीज मुस्तना जर्मन महारत के साथ तैयार करदा कुदरत के बेहतरीन नज़ा लाए हैं ताकि आपकी सेहत की बेहतरीन देखभाल हो सके. डॉक्टर हमीद जर्नल होमियो और शॉबे सिंगल रेमेडीज, भरोसे, देखभाल और जर्मन महारत के 75 साल.
2: कहीं फिर से रहमो चाचा अपना डांगा लेकर न आ जाए. वो मुझे अपनी गोद में बिठाएंगे. मैं अम्मी को भी बताने से डरती हूँ.
3: आम तौर पर यही समझा जाता है कि बच्चों के साथ जिनसी बदसलूकी सिर्फ अजनबी करते हैं, मगर ऐसा नहीं है. दरअसल ये वो लोग होते हैं जिन पर माँ बाप आंख बंद करके भरोसा कर लेते हैं. बच्चों को समझाएं, चाहे अपना हो या पराया, इनकी मर्जी के खिलाफ कोई इन्हें छुए तो आपको फौरन बताएं. जिनसी बदसलूकी के बचाव के लिए बच्चों में अपनी हिफाजत करने की समझबूझ पैदा करें. पाकिस्तान का आईन और कानून हर बच्चे को जिस्मानी और नफसियाती हक फराहम करता है. तहफ्फुज हर बच्चे का हक है. आए इसे यकीनी बनाएं. मजीद मालूमात और मशवरे के लिए हेल्प लाइन 1099 पे कॉल करें. वजारत इंसानी हुकूक, हुकूमत पाकिस्तान.
0: मुफाद आम्मा के लिए पैगाम हुकूमत पाकिस्तान और FM 100 कराची की जानिब से पेश किया गया.
4: FM 100 लाइक अस ऑन facebook.com/FM247365.

0: FM 100's time check. It's 5 p.m.
1: जब जिंदगी एक लफ्ज से रुक सी जाए, कैंसर, सिर्फ एक बीमारी नहीं, एक इम्तिहान है। हर दिन एक जंग से कम नहीं, एक ऐसी जंग जिसमें बहुत से लोग नाउम्मीद हो जाते हैं। मगर अब मायूसी उम्मीद में बदल रही है। डाउ कॉम्प्रिहेंसिव कैंसर सेंटर, हुकूमत सिंध का वो कदम जहां कैंसर का इलाज अब एक नए मायार पर मुमकिन है। गामा नाइफ एडवांस टेक्नोलॉजी के जरिए ब्रेन ट्यूमर का बगैर सर्जरी के इलाज किया जाता है, जो उमूमन एक ही दिन में मुमकिन होता है। और इसके जरिए एडवांस स्टेज ब्रेन ट्यूमर्स यानी तीसरे और चौथे स्टेज के साथ मल्टीपल मेटास्टेटिस का इलाज भी मुमकिन है। जदीद तरीन MR लिनक मशीन की बदौलत अब कैंसर जिस्म के किसी भी हिस्से में छुप नहीं सकता। दौरान इलाज इसे बराह रास्त देखा जा सकता है और रेडिएशन को उसके रिएक्शन के मुताबिक फौरन एडजस्ट किया जाता है। यहाँ पूरे पाकिस्तान से आए हुए लोगों का इलाज मुफ्त किया जाता है। अब कैंसर का फौरी इलाज ख्वाब नहीं, हकीकत बन चुका है, जो हुकूमत सिंध और चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी के विजन से मुमकिन हुआ। क्योंकि ये सिर्फ इलाज नहीं, उम्मीद है हर उस चेहरे की जो जीना चाहता है। खिदमत में सबसे आगे सिंध।
2: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ अपने ख्वाबों और बिजनेस को दे आजादी की उड़ान। मुफ्त IBFT, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ अकाउंट खोले डिजिटली या विजिट करें अपनी करीबी HBL ब्रांच। HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां ख्वाब वहां HBL।
3: जब बात आपकी सेहत की हो तो खालिस्तान बहुत अहमियत रखता है, शोबे मयार की सख्त जांच पड़ताल करता है ताकि इस बात को यकीनी बनाया जा सके कि हर दवा असली और काबिल भरोसा हो। डॉक्टर हमीद जर्नल होमियो और शोबे जर्मनी, पिछले 75 सालों से सेहतमंद पाकिस्तान के लिए गोशा।
2: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ मुफ्त IBFT, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां ख्वाब वहां HBL।
4: नाजरीन, ताज़ा तरीन खबर से आपको आगाह करेंगे कि पूरे शहर में फैल चुकी है आपके टॉयलेट की बदबू।
5: बंद करो ना ढक्कन।
6: स्वीप वी क्लीन करे तेजी से सख्त दाग और जरासीम का खात्मा और आपके टॉयलेट को चमकता हुआ साफ।
2: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ मुफ्त IBFT, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां ख्वाब वहां HBL।
7: बेहतरीन इंश्योरेंस हर वक्त आपके साथ, जैसे इजी पैसा इंश्योरेंस मार्केट प्लेस, 50 से ज्यादा प्लान्स, बेहतरीन कवरेज, खास डिस्काउंट्स और सिर्फ 24 घंटों में क्लेम हासिल करने की सहूलत। कवर 3 के लिए डेडिकेटेड प्लान्स और 25,000 टॉप डॉक्टर्स से कंसल्टेशन भी। अभी इजी पैसा ऐप पर इंश्योरेंस मार्केट प्लेस एक्सप्लोर करें। इजी पैसा डिजिटल बैंक, इजी वाला बैंक।
2: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ अपने ख्वाबों और बिजनेस को दे आजादी की उड़ान। मुफ्त IBFT, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ अकाउंट खोले डिजिटली या विजिट करें अपनी करीबी HBL ब्रांच। HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां ख्वाब वहां HBL।
8: This program is brought to you by
6: Sweep Be Clean करे तेजी से सख्त दाग और जरासीम का खात्मा और आपके टॉयलेट को चमकता हुआ साफ।
2: And HBL Freedom Account, जहां ख्वाब वहां HBL।
9: And carry land on, don't stop fun करते जाओ।
10: कहीं अनजाने में आप दहशत गर्दों की माली मुआवनत तो नहीं कर रहे? होशियार रहें, मोहतात रहें। अपना बैंक अकाउंट किसी दूसरे फर्द को हरगिज इस्तेमाल न करने दें और न ही किसी अनजान अकाउंट में रकम मुंतकिल करें। हुंडी, हवाला या बैंक अकाउंट के जरिए दहशतगर्दों की माली मुआवनत करने वाले अफराद के खिलाफ इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट के तहत सख्त कानूनी कार्रवाई का आगाज हो चुका है। याद रखें, दहशतगर्दों की माली मुआवनत भी दहशतगर्दी है। हुकूमत ए पाकिस्तान।
11: مفاد عامہ کے لیے پیغام حکومت پاکستان اور ایف ایم 100 کراچی کی جانب سے پیش کیا گیا.
12: 31 years of memories, milestone and moments. FM 100 Pakistan. It's a legacy.
13: Assalamu alaikum, Pakistan. Let's celebrate the journey.

0: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ मुफ्त IBFT, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां ख्वाब वहां HBL।
1: बच्चों का ऑनलाइन तहफ्फुज आपकी जिम्मेदारी है। अपने बच्चों को ऑनलाइन राब्तों का महफूज तरीका इस्तेमाल सिखाएं। इंटरनेट के जरिए खेलों, तफरी और तालीमी सरगर्मियों में शामिल होने के फवायद जरूर हैं, लेकिन इसमें नामुनासिब मवाद, साइबर बुलिंग और दीगर ऑनलाइन नुकसानात जैसे मुमकिन खतरात भी मौजूद हैं। वालिदैन और असातिज़ा की जानिब से बच्चों की निगरानी और रहनुमाई न होने की सूरत में बच्चे बासानी मनफी सरगर्मियों का शिकार हो सकते हैं। वालिदैन को अपने बच्चों की ऑनलाइन सरगर्मियों के हवाले से आगाह और होशियार रहने की जरूरत है। बच्चों को नुकसानदेह मवाद जैसे नफरत अंगेज तकरीर, गुस्ताखाना और फहाश मवाद वगैरह अपलोड और शेयर करने के कानूनी नतायज के हवाले से भी शऊर और आगाही इंतहाई अहमियत की हामिल है। PTA की वेबसाइट पर पेरेंटल कंट्रोल सॉफ्टवेयर की एक फहरिस्त दस्तियाब है, ताकि वालदैन अपने बच्चों की ऑनलाइन सरगर्मियों की निगरानी करते हुए उन्हें ऑनलाइन नुकसान से महफूज रखें। www.pta.gov.pk। मुफाद आमा के लिए ये पैगाम FM 100 और हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया।
2: दिस प्रोग्राम इज ब्रॉट टू यू बाय
3: स्वीपी क्लीन, करे तेजी से सख्त दाग और जरासीम का खात्मा और रखे टॉयलेट को चमकता हुआ साफ।
0: एंड HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां ख्वाब वहां HBL।
4: एंड कैडिलैक नॉनस्टॉप फन करते जाओ।
5: ख्वाब तो सब देखते हैं बेहतर रोजगार का, मगर इस ख्वाब की ताबीर के गैर कानूनी जराए खतरनाक रस्तों पे ले जा सकते हैं, जहां मौत मुंह खोले आपकी मुंतजर है।
6: हमने अपने आप को 3 बार मौत देखा।
7: टाइम से मनु ऐसे ही के मैं हूं, कब्र से चला गया, मैं नहीं बचा।
8: फिर उन्होंने साड़ी वीडियो बनाया, सानू मारिया, सानू कुटिया।
5: अपने ख्वाबों की तकमील के लिए कानूनी रास्ता इख्तियार करें।
9: एम्बेसी के थ्रू प्रॉपर वे में सबमिट करवाया और बहुत ही जल्दी मेरा वीजा लग गया था वर्क वीजा।
5: इंसानी स्मगलिंग में मुलविस गिरोहों के सद्देभाव के लिए वज़ीर आज़म पाकिस्तान की सरबराही में खुसूसी टास्क फोर्स का कयाम, मुलगीर क्रैकडाउन जारी, एजेंट्स और सरकारी अहलकारान के खिलाफ मुकदमात का इंदराज, गिरफ्तारियां, जायदादों की जब्तगी और बैंक अकाउंट्स मुंजमित किए जा रहे हैं। अंदरूनों बैरूने मुल्क बेहतर रोजगार के लिए प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम और नेफटेक के जदीद तरीन और मुफ्त कोर्सेज में अभी दाखिला लें। मकामात मुकद्दसा की ज़ियारत को जाने वाले ज़ायरीन भी कानूनी ज़राए इख्तियार करें। इंसानी स्मगलरों के चुंगल से बचें, ख्वाब जरूर देखें, बेहतर रास्ता चुनें। हुकूमत पाकिस्तान।
1: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया।
10: बैंकिंग सहूलियात जैसा कि माइक्रो फाइनेंस एप्स, जैज कैश, इजी पैसा और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स अमूमन सारिफ के रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर के साथ मुंसलिक होते हैं, जिसके जरिए ये अकाउंट्स न सिर्फ फाल किए जाते हैं बल्कि किसी तब्दीली की सूरत में तस्दीक के लिए भी इस्तेमाल किए जाते हैं। अगर कोई सिम आपके नाम से हटा दी जाए या तवील अरसे तक इस्तेमाल न होने की वजह से रिसाइकल होकर दोबारा जारी कर दी जाए तो यही नंबर किसी दूसरे शख्स को दिया जा सकता है, और अगर बर वक्त एहतियाती तदाबीर इख्तियार न की जाए तो नया सारिफ इस नंबर से मुंसलिक आपके सोशल या दिगर डिजिटल अकाउंट्स तक रसाई कर सकता है। ऐसे अकाउंट से की जाने वाली किसी भी गैर कानूनी, गुमराह कुन या तौहीन आमेज सरगर्मी की जिम्मेदारी असल अकाउंट होल्डर पर आयद हो सकती है, जिसके नतीजे में कानूनी पेचीदगियां और शोहरत को नुकसान पहुंचने का खदशा होता है। इसी तरह अगर पुराने नंबर से मुंसलिक बैंकिंग या मालियाती एप्स महफूज न की जाए तो माली धोखाधही और गलत इस्तेमाल का खतरा भी पैदा हो सकता है। अपने ऑनलाइन तहफ्फुज के पेश नजर ये इकदाम जरूर उठाएं। जैसे ही कोई नंबर अपने नाम से हटाएं या तब्दील करें, फौरन अपने तमाम सोशल मीडिया और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स अपडेट कर लें। अपने बैंक, माइक्रो फाइनेंस और पेमेंट ऐप्स में हमेशा अपना मौजूदा और फाल नंबर रखें। अकाउंट्स में मजबूत सिक्योरिटी फीचर्स फाल करें, जैसा कि 2-फैक्टर ऑथेंटिकेशन और अकाउंट रिकवरी की सेटिंग्स। डिजिटल तहफ्फुज़ का आगाज सिम के जिम्मेदाराना इस्तेमाल से ही मुमकिन है। बर वक्त और पेश के इकदाम आपकी शनाख्त, माली तहफ्फुज़ और कानूनी हैसियत में मददगार साबित होते हैं। डिजिटल दुनिया में महफूज कदम, PTA।
11: facebook.com/fm247365
12: FM 247 365

0: FM 100's time check. It's 6 p.m.
1: जब जिंदगी एक लफ्ज से रुक सी जाए, कैंसर, सिर्फ एक बीमारी नहीं, एक इम्तिहान है। हर दिन एक जंग से कम नहीं, एक ऐसी जंग जिसमें बहुत से लोग नाउम्मीद हो जाते हैं। मगर अब मायूसी उम्मीद में बदल रही है। डाउ कॉम्प्रिहेंसिव कैंसर सेंटर, हुकूमत सिंध का वो कदम जहां कैंसर का इलाज अब एक नए मायार पर मुमकिन है। गामा नाइफ एडवांस टेक्नोलॉजी के जरिए ब्रेन ट्यूमर का बगैर सर्जरी के इलाज किया जाता है, जो उमूमन एक ही दिन में मुमकिन होता है, और इसके जरिए एडवांस स्टेज ब्रेन ट्यूमर्स यानी तीसरे और चौथे स्टेज के साथ मल्टीपल मेटास्टेटिस का इलाज भी मुमकिन है। जदीद तरीन MR लिनक मशीन की बदौलत अब कैंसर जिस्म के किसी भी हिस्से में छुप नहीं सकता। दौराने इलाज इसे बराह रास्त देखा जा सकता है और रेडिएशन को उसके रिएक्शन के मुताबिक फौरन एडजस्ट किया जाता है। यहाँ पूरे पाकिस्तान से आए हुए लोगों का इलाज मुफ्त किया जाता है। अब कैंसर का फौरी इलाज ख्वाब नहीं, हकीकत बन चुका है, जो हुकूमत सिंध और चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी के विजन से मुमकिन हुआ। क्योंकि ये सिर्फ इलाज नहीं, उम्मीद है हर उस चेहरे की जो जीना चाहता है। खिदमत में सबसे आगे सिंध।
2: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ अपने ख्वाबों और बिजनेस को दे आजादी की उड़ान। मुफ्त IBFT, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ अकाउंट खोले डिजिटली या विजिट करें अपनी करीबी HBL ब्रांच। HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां ख्वाब वहां HBL।
3: खालिस अज्जा, भरोसे मंद शिफा, श्वाबे सिंगल रेमेडीज कुदरत के बेहतरीन अज्जा से तैयार की गई हैं, क्योंकि आपकी सेहत इससे कम की हकदार नहीं। डॉक्टर हमीद जनरल होम्यो और श्वाबे सिंगल रेमेडीज 75 सालों से पाकिस्तान में नस्लों का भरोसा।
4: हायर नो फ्रॉस्ट IoT रेफ्रिजरेटर, इसकी IoT टेक्नोलॉजी फूड एक्सपायरी नोटिफिकेशन के साथ साथ आपको दे मोबाइल ऐप से कंप्लीट कंट्रोल। नो फ्रॉस्ट, नो वरीज।
2: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ मुफ्त IBFT, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां ख्वाब वहां HBL।
5: नाजरीन, ताज़ा तरीन खबर से आपको आगाह करेंगे कि पूरे शहर में फैल चुकी है आपके टॉयलेट की बदबू।
6: बंद करो ना ढक्कन।
7: स्वीपी क्लीन करे तेजी से सख्त दाग और जरासीम का खात्मा और रखे टॉयलेट को चमकता हुआ साफ।
2: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ मुफ्त IBFT, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां ख्वाब वहां HBL।
8: जैज कैश के साथ पाओ फिर से 1 करोड़ जीतने का शानदार मौका। अब हर महीने अपने जैज कैश अकाउंट में 15,000 रुपए या ज्यादा का बैलेंस मेंटेन करने पर 60 लकी विनर्स को मिलेगा 5,00,000 रुपए तक का इनाम, और साथ ही साथ मिलेगा 1 करोड़ का बम्पर प्राइज। बैलेंस मेंटेन करने पर करोड़ों के कैश प्राइजेस जीतने के लिए जैज कैश है ना।
4: नया नो फ्रॉस्ट IoT रेफ्रिजरेटर, जिसका मल्टी एयर फ्लो सिस्टम दे बैलेंस्ड कूलिंग हर कंपार्टमेंट में और रखे आपके रेफ्रिजरेटर को क्लीन। ट्विन इन्वर्टर टेक्नोलॉजी जिससे मिले मैक्सिमम कूलिंग और एनर्जी सेविंग। नो फ्रॉस्ट, नो वरीज।
9: बेहतरीन इंश्योरेंस हर वक्त आपके साथ, जैसे इजी पैसा इंश्योरेंस मार्केट प्लेस, 50 से ज्यादा प्लान्स, बेहतरीन कवरेज, खास डिस्काउंट्स और सिर्फ 24 घंटों में क्लेम हासिल करने की सहूलत। कवर 3 के लिए डेडिकेटेड प्लान्स और 25,000 टॉप डॉक्टर से कंसल्टेशन भी। अभी इजी पैसा ऐप पर इंश्योरेंस मार्केट प्लेस एक्सप्लोर करें। इजी पैसा डिजिटल बैंक, इजी वाला बैंक।
10: शेयर्ड बंडल्स, वो भी डिस्काउंट पर। सब्सक्राइब करना तो बनता है, तो बस अभी जैज कैश ऐप से जैज B5 फैंटास्टिक बंडल लगाओ और पाओ 2,000 रुपए तक का बेहतरीन डिस्काउंट अपने फेवरेट बंडल्स पर। बड़े डिस्काउंट्स के लिए जैज कैश है ना।

0: This program is brought to you by
1: Sweepy Clean. करे तेजी से सख्त दाग और जरासीम का खात्मा और रखे टॉयलेट को चमकता हुआ साफ.
2: And HBL Freedom Account. जहां खाब वहां HBL.

पैसे खर्च हो तो रिवॉर्ड तो बनता है। चैट कैश से सिर्फ 99 रुपए में रिवॉर्ड हब सब्सक्राइब करें, चैलेंजेस कंप्लीट करके अपना लेवल अपग्रेड करें और जीतें शानदार प्राइजेस। तो देर किस बात की, हर चैलेंज को एक्साइटिंग रिवॉर्ड में बदलने के लिए जैज कैश है ना।

0: Like us on facebook.com/FM247365.
1: FM247365.
2: Evening 5 time.

0: your very own destination. We are 100% always with you.
1: FM 100.
0: So, this connection is forever, around the clock, here on Radio 100 Pakistan.
2: HBL Freedom Account के साथ अपने ख्वाबों और बिजनेस को दे आजादी की उड़ान. मुफ्त IBFT, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ अकाउंट खोले डिजिटली या विजिट करें अपनी करीबी HBL ब्रांच. HBL Freedom Account, जहां ख्वाब वहां HBL.
3: हायर नो फ्रॉस्ट IoT रेफ्रिजरेटर. इसकी IoT टेक्नोलॉजी फूड एक्सपायरी नोटिफिकेशन के साथ साथ आपको दे मोबाइल ऐप से कंप्लीट कंट्रोल. नो फ्रॉस्ट, नो वरीज.
2: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ मुफ्त IBFT, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां ख्वाब वहां HBL.
3: हायर कर नया नो फ्रॉस्ट IoT रेफ्रिजरेटर, जिसका मल्टी एयर फ्लो सिस्टम दे बैलेंस्ड कूलिंग हर कंपार्टमेंट में और रखे आपके रेफ्रिजरेटर को क्लीन. ट्विन इन्वर्टर टेक्नोलॉजी, जिससे मिले मैक्सिमम कूलिंग और एनर्जी सेविंग. नो फ्रॉस्ट, नो वरीज.
4: शेयर्ड बंडल्स, वो भी डिस्काउंट पर. सब्सक्राइब करना तो बनता है, तो बस अभी जैस कैश ऐप से जैस V5 फैंटास्टिक बंडल लगाओ और पाओ 2000 रुपए तक का बेहतरीन डिस्काउंट अपने फेवरेट बंडल्स पर. बड़े डिस्काउंट्स के लिए जैस कैश है ना.

0: FM 100's time check. It's 7 p.m. This program was brought to you by
1: Sweepy Clean. Kare tezi se sak daag aur jarasim ka khatma aur rakhe toilet ko chamakta hua saaf.
0: And HBL Freedom Account. Jahan khwab, wahan HBL. And
2: Candyland. Non-stop fun.
3: जब जिंदगी एक लफ्ज से रुक सी जाए, कैंसर, सिर्फ एक बीमारी नहीं, एक इम्तिहान है। हर दिन एक जंग से कम नहीं, एक ऐसी जंग जिसमें बहुत से लोग नाउम्मीद हो जाते हैं। मगर अब मायूसी उम्मीद में बदल रही है। डाउ कॉम्प्रिहेंसिव कैंसर सेंटर, हुकूमत सिंध का वो कदम जहां कैंसर का इलाज अब एक नए मयार पर मुमकिन है। गामा नाइफ एडवांस टेक्नोलॉजी के जरिए ब्रेन ट्यूमर का बगैर सर्जरी के इलाज किया जाता है, जो उमूमन एक ही दिन में मुमकिन होता है, और इसके जरिए एडवांस स्टेज ब्रेन ट्यूमर्स यानी तीसरे और चौथे स्टेज के साथ मल्टीपल मेटास्टेटिस का इलाज भी मुमकिन है। जदीद तरीन MR लिनक मशीन की बदौलत अब कैंसर जिस्म के किसी भी हिस्से में छुप नहीं सकता, दौरान इलाज इसे बराह रास्त देखा जा सकता है और रेडिएशन को उसके रिएक्शन के मुताबिक फौरन एडजस्ट किया जाता है। यहाँ पूरे पाकिस्तान से आए हुए लोगों का इलाज मुफ्त किया जाता है। अब कैंसर का फौरी इलाज ख्वाब नहीं, हकीकत बन चुका है, जो हुकूमत सिंध और चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी के विजन से मुमकिन हुआ। क्योंकि ये सिर्फ इलाज नहीं, उम्मीद है हर उस चेहरे की जो जीना चाहता है। खिदमत में सबसे आगे सिंध।
0: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ अपने ख्वाबों और बिजनेस को दे आजादी की उड़ान। मुफ्त IBFT, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ अकाउंट खोले डिजिटली या विजिट करें अपनी करीबी HBL ब्रांच। HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां ख्वाब वहां HBL।
4: आम चीजों पर समझौता क्यों करें? शॉबे सिंगल रेमेडीज मुस्तनद जर्मन महारत के साथ तैयार करदा कुदरत के बेहतरीन अज्जा लाए हैं, ताकि आपकी सेहत की बेहतरीन देखभाल हो सके। डॉक्टर हमीद जर्नल होमियो और शॉबे सिंगल रेमेडीज, भरोसे, देखभाल और जर्मन महारत के 75 साल।
0: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ मुफ्त IBFT, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां ख्वाब वहाँ HBL।
5: हायर का नया नो फ्रॉस्ट IoT रेफ्रिजरेटर, जिसका मल्टी एयर फ्लो सिस्टम दे बैलेंस्ड कूलिंग हर कंपार्टमेंट में और रखे आपके रेफ्रिजरेटर को क्लीन। ट्विन इन्वर्टर टेक्नोलॉजी, जिससे मिले मैक्सिमम कूलिंग और एनर्जी सेविंग। नो फ्रॉस्ट, नो वरीज।
0: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ मुफ्त IBFT, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां ख्वाब वहां HBL।
6: जैज कैश के साथ पाओ फिर से 1 करोड़ जीतने का शानदार मौका। अब हर महीने अपने जैज कैश अकाउंट में 15,000 रूपए या ज्यादा का बैलेंस मेंटेन करने पर 60 लकी विनर्स को मिलेगा 5,00,000 रूपए तक का इनाम, और साथ ही साथ मिलेगा 1 करोड़ का बम्पर प्राइज। बैलेंस मेंटेन करने पर करोड़ों के कैश प्राइजेस जीतने के लिए जैज कैश है ना।
5: नो फ्रॉस्ट IoT रेफ्रिजरेटर, इसकी IoT टेक्नोलॉजी फूड एक्सपायरी नोटिफिकेशन के साथ साथ आपको दे मोबाइल ऐप से कंप्लीट कंट्रोल। नो फ्रॉस्ट, नो वरीज।
7: बेहतरीन इंश्योरेंस हर वक्त आपके साथ, जैसे इजी पैसा इंश्योरेंस मार्केट प्लेस, 50 से ज्यादा प्लान्स, बेहतरीन कवरेज, खास डिस्काउंट्स और सिर्फ 24 घंटों में क्लेम हासिल करने की सहूलत। कवर 3 के लिए डेडिकेटेड प्लान्स और 25,000 टॉप डॉक्टर्स से कंसल्टेशन भी। अभी इजी पैसा ऐप पर इंश्योरेंस मार्केट प्लेस एक्सप्लोर करें। इजी पैसा डिजिटल बैंक, इजी वाला बैंक।
8: शेयर बंडल्स, वो भी डिस्काउंट पर। सब्सक्राइब करना तो बनता है, तो बस अभी जैज कैश ऐप से जैज V5 फैंटास्टिक बंडल लगाओ और पाओ 2,000 रूपए तक का बेहतरीन डिस्काउंट अपने फेवरेट बंडल्स पर बड़े डिस्काउंट्स के लिए। जैज कैश है ना।

0: पैसे खर्च हो तो रिवॉर्ड तो बनता है। चैट कैश से सिर्फ 99 रुपए में रिवॉर्ड हब सब्सक्राइब करें, चैलेंजेस कंप्लीट करके अपना लेवल अपग्रेड करें और जीतें शानदार प्राइजेस। तो देर किस बात की, हर चैलेंज को एक्साइटिंग रिवॉर्ड में बदलने के लिए जैस कैश है ना।
1: दिस प्रोग्राम इज ब्रॉट टू यू बाय
2: तूफान है।
3: कहीं अनजाने में आप दहशतगर्दों की माली मुआवनत तो नहीं कर रहे? होशियार रहें, मोहतात रहें। अपना बैंक अकाउंट किसी दूसरे फर्द को हरगिज इस्तेमाल न करने दें और न ही किसी अनजान अकाउंट में रकम मुंतकिल करें। हुंडी, हवाला या बैंक अकाउंट के जरिए दहशतगर्दों की माली मुआवनत करने वाले अफराद के खिलाफ इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट के तहत सख्त कानूनी कार्रवाई का आगाज हो चुका है। याद रखें, दहशतगर्दों की माली मुआवनत भी दहशतगर्दी है। हुकूमत पाकिस्तान।
4: मुफाद आम्मा के लिए पैगाम हुकूमत पाकिस्तान और FM 100 कराची की जानिब से पेश किया गया।
5: FM 100 लाइक अस ऑन facebook.com/FM247365
6: FM 247365।
7: Let's celebrate
8: 31 years of memory, milestone and moments. FM 100 Pakistan. It's a legacy.
6: Assalamu alaikum, Pakistan. Let's celebrate the journey.

0: It's 7:30 PM. This time check is brought to you by HBL Freedom Account. Jahan khwab, wahan HBL.
1: Jab zindagi ek lafz se ruk si jaye, cancer. Sirf ek bimari nahi, ek imtihan hai. Har din ek jung se kam nahi, ek aisi jung jisme bahut se log na umeed ho jate hain. Magar ab mayusi umeed mein badal rahi hai. Dow Comprehensive Cancer Center, hukumat e Sindh ka wo kadam jahan cancer ka ilaj ab ek naye mayar par mumkin hai. Gamma knife advanced technology ke zariye brain tumor ka baghair surgery ke ilaj kiya jata hai jo umuman ek hi din mein mumkin hota hai aur iske zariye advanced stage brain tumors yani teesri aur chauthe stage ke sath multiple metastasis ka ilaj bhi mumkin hai. Jadid tarin MR Linac machine ki badolat ab cancer jism ke kisi bhi hisse mein chup nahi sakta daurane ilaj ise barah raast dekha ja sakta hai aur radiation ko uske reaction ke mutabik foran adjust kiya jata hai. Yahan pure Pakistan se aaye hue logon ka ilaj muft kiya jata hai. Ab cancer ka fauri ilaj khwab nahi haqeeqat ban chuka hai jo hukumat e Sindh aur chairman Bilawal Bhutto Zardari ke vision se mumkin hua, kyunki ye sirf ilaj nahi ummeed hai har us chehre ki jo jeena chahta hai. Khidmat mein sabse aage Sindh.
0: HBL Freedom Account ke saath apne khwabon aur business ko de azadi ki udaan. Muft IBFT, muft checkbook, muft online banking aur behtareen mobile app ki sahulat ke saath account khole digitally ya visit kare apni kareebi HBL branch. HBL Freedom Account, jahan khwab wahan HBL.
2: जब बात आपकी सेहत की हो तो खालिस्तन बहुत अहमियत रखता है, शोबे मयार की सख्त जांच पड़ताल करता है ताकि इस बात को यकीनी बनाया जा सके कि हर दवा असली और काबिले भरोसा हो. डॉक्टर हमीद जर्नल होमियो और शोबे जर्मनी, पिछले 75 सालों से सेहतमंद पाकिस्तान के लिए कोशां.
3: हायर का नया नो फ्रॉस्ट IoT रेफ्रिजरेटर जिसका मल्टी एयर फ्लो सिस्टम दे बैलेंस्ड कूलिंग हर कंपार्टमेंट में और रखे आपके रेफ्रिजरेटर को क्लीन. ट्विन इन्वर्टर टेक्नोलॉजी जिससे मिले मैक्सिमम कूलिंग और एनर्जी सेविंग. नो फ्रॉस्ट, नो वरीज.
0: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ मुफ्त IBFT, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां खाब वहां HBL.
4: जैस कैश के साथ पाओ फिर से 1 करोड़ जीतने का शानदार मौका. अब हर महीने अपने जैस कैश अकाउंट में 15,000 रुपए या ज्यादा का बैलेंस मेंटेन करने पर 60 लकी विनर्स को मिलेगा 5 लाख रुपए तक का इनाम और साथ ही साथ मिलेगा 1 करोड़ का बम्पर प्राइज. बैलेंस मेंटेन करने पर करोड़ों के कैश प्राइजेस जीतने के लिए जैस कैश है ना.
3: नो फ्रॉस्ट IoT रेफ्रिजरेटर इसकी IoT टेक्नोलॉजी फूड एक्सपायरी नोटिफिकेशन के साथ साथ आपको दे मोबाइल ऐप से कंप्लीट कंट्रोल. नो फ्रॉस्ट, नो वरीज.
5: बेहतरीन इंश्योरेंस हर वक्त आपके साथ, जैसे इजी पैसा इंश्योरेंस मार्केट प्लेस, 50 से ज्यादा प्लान्स, बेहतरीन कवरेज प्लस डिस्काउंट्स और सिर्फ 24 घंटों में क्लेम हासिल करने की सहूलत. कवर 3 के लिए डेडिकेटेड प्लान्स और 25,000 टॉप डॉक्टर्स से कंसल्टेशन भी. अभी इजी पैसा ऐप पर इंश्योरेंस मार्केट प्लेस एक्सप्लोर करें. इजी पैसा डिजिटल बैंक, इजी वाला बैंक.
6: शेयर बंडल्स वो भी डिस्काउंट पर, सब्सक्राइब करना तो बनता है, तो बस अभी जैस कैश ऐप से जैस V5 फैंटास्टिक बंडल लगाओ और पाओ 2,000 रुपए तक का बेहतरीन डिस्काउंट अपने फेवरेट बंडल्स पर बड़े डिस्काउंट्स के लिए. जैस कैश है ना.

पैसे खर्च हो तो रिवॉर्ड तो बनता है। चैट कैश से सिर्फ 99 रुपए में रिवॉर्ड हब सब्सक्राइब करें, चैलेंजेस कंप्लीट करके अपना लेवल अपग्रेड करें और जीतें शानदार प्राइजेस। तो देर किस बात की, हर चैलेंज को एक्साइटिंग रिवॉर्ड में बदलने के लिए जैस कैश है ना।

0: This program is brought to you by Tufaan Hai. नशा न परेशानियां खत्म करता है, इसका सरूर हमेशा रहता है। ये एक लम्हे की कमजोरी है जो सारी जिंदगी का रोग बन जाती है। मातला इल्मी जहालत और हमाकत से शुरू होती है और सारे खानदान को तबाह कर देती है। ऐसी कोई खाने पीने लगाने या सरूर दिलवाने वाली अशिया का इस्तेमाल न करें जिसमें नशा हो। वालिदैन, असातिज़ा और दोस्त बच्चों पर नजर रखें। हंसी मजाक में की गई हरकत आपकी सांसें भी खत्म कर सकती है। नशे से इनकार, जिंदगी से प्यार। मंशियात की सरगर्मियों की रोकथाम के लिए हमारी हेल्पलाइन पर राबता करें।
1: मुफादे आम्मा के लिए पैगाम हुकूमत पाकिस्तान और FM 100 कराची की जानिब से पेश किया गया।
2: तोहीन रिसालत, नफरत आमेज तकरीर और मजहबी फिरका वारियत का फरोग आईन पाकिस्तान के मुताबिक एक इंतहाई संगीन जुर्म है। सोशल मीडिया जैसा कि यूट्यूब, ट्विटर या केबल FM पर इस मैयत का गैर कानूनी मवाद नजर में आए तो FIA, साइबर क्राइम विंग, PTA या पेमरा को फौरी इतला करें। जिम्मेदार शहरी बने, मीडिया, इंटरनेट और सोशल मीडिया का मुस्बत इस्तेमाल करें। मुफाद आमा का ये पैगाम आपको पेमरा की जानिब से पेश किया जा रहा है।
3: FM 24/7 365 FM 24/7 365 Evening Drive Time.

0: This program was brought to you by Tufaan Hai. FM 100's time check. It's 8 p.m.
1: जब जिंदगी एक लफ्ज से रुक सी जाए, कैंसर, सिर्फ एक बीमारी नहीं, एक इम्तिहान है। हर दिन एक जंग से कम नहीं, एक ऐसी जंग जिसमें बहुत से लोग नाउम्मीद हो जाते हैं, मगर अब मायूसी उम्मीद में बदल रही है। डाउ कॉम्प्रिहेंसिव कैंसर सेंटर, हुकूमत सिंध का वो कदम जहां कैंसर का इलाज अब एक नए मयार पर मुमकिन है। गामा नाइफ एडवांस टेक्नोलॉजी के जरिए ब्रेन ट्यूमर का बगैर सर्जरी के इलाज किया जाता है, जो उमूमन एक ही दिन में मुमकिन होता है, और इसके जरिए एडवांस स्टेज ब्रेन ट्यूमर्स यानी तीसरे और चौथे स्टेज के साथ मल्टीपल मेटास्टेटिस का इलाज भी मुमकिन है। जदीद तरीन MR लिनक मशीन की बदौलत अब कैंसर जिस्म के किसी भी हिस्से में छुप नहीं सकता, दौरान इलाज इसे बराह रास्त देखा जा सकता है और रेडिएशन को उसके रिएक्शन के मुताबिक फौरन एडजस्ट किया जाता है। यहाँ पूरे पाकिस्तान से आए हुए लोगों का इलाज मुफ्त किया जाता है। अब कैंसर का फौरी इलाज ख्वाब नहीं, हकीकत बन चुका है, जो हुकूमत सिंध और चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी के विजन से मुमकिन हुआ, क्योंकि ये सिर्फ इलाज नहीं, उम्मीद है हर उस चेहरे की जो जीना चाहता है। खिदमत में सबसे आगे सिंध।
2: शेयर बंडल्स, वो भी डिस्काउंट पर, सब्सक्राइब करना तो बनता है, तो बस अभी जैस कैश ऐप से जैस V5 फैंटास्टिक बंडल लगाओ और पाओ 2,000 रुपए तक का बेहतरीन डिस्काउंट अपने फेवरेट बंडल्स पर। बड़े डिस्काउंट्स के लिए जैस कैश है ना।
3: 100 FM।
4: पैसे खर्च हो तो रिवॉर्ड तो बनता है। जैस कैश से सिर्फ 99 रुपए में रिवॉर्ड हब सब्सक्राइब करें, चैलेंजेस कंप्लीट करके अपना लेवल अपग्रेड करें और जीतें शानदार प्राइजेस। तो देर किस बात की, हर चैलेंज को एक्साइटिंग रिवॉर्ड में बदलने के लिए जैस कैश है ना।
3: 100 FM।
4: जैस कैश के साथ पाओ फिर से 1 करोड़ जीतने का शानदार मौका। अब हर महीने अपने जैस कैश अकाउंट में 15,000 रुपए या ज्यादा का बैलेंस मेंटेन करने पर 60 लकी विनर्स को मिलेगा 5,00,000 रुपए तक का इनाम, और साथ ही साथ मिलेगा 1 करोड़ का बम्पर प्राइज। बैलेंस मेंटेन करने पर करोड़ों के कैश प्राइजेस जीतने के लिए जैस कैश है ना।
0: This program is brought to you by
5: Higher Kanaya No Frost IoT Refrigerator, Twin Inverter Technology, जिससे मिले maximum cooling और energy saving. No frost, no worries.
0: FM 100. Like us on facebook.com/FM247365.
6: FM 247365. FM 100.
7: 31 साल FM 100 आपकी आवाज। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान।
6: अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। पाकिस्तान।

0: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا.
1: FM 24/7/365

0: حرفه.
1: It's 8:30 p.m. This time check is brought to you by HBL Freedom Account. Jahan khwab, wahan HBL.
2: Jab zindagi ek lafz se ruk si jaye. Cancer. Sirf ek bimari nahi, ek imtihan hai. Har din एक जंग से कम नहीं, एक ऐसी जंग जिसमें बहुत से लोग नाउम्मीद हो जाते हैं, मगर अब मायूसी उम्मीद में बदल रही है। डाउ कॉम्प्रिहेंसिव कैंसर सेंटर, हुकूमत सिंध का वो कदम जहां कैंसर का इलाज अब एक नए मायार पर मुमकिन है। गामा नाइफ एडवांस टेक्नोलॉजी के जरिए ब्रेन ट्यूमर का बगैर सर्जरी के इलाज किया जाता है, जो उमूमन एक ही दिन में मुमकिन होता है, और इसके जरिए एडवांस स्टेज ब्रेन ट्यूमर्स यानी तीसरे और चौथे स्टेज के साथ मल्टीपल मेटास्टेटिस का इलाज भी मुमकिन है। जदीद तरीन MR लिनक मशीन की बदौलत अब कैंसर जिस्म के किसी भी हिस्से में छुप नहीं सकता, दौरान इलाज इसे बराह रास्त देखा जा सकता है और रेडिएशन को उसके रिएक्शन के मुताबिक फौरन एडजस्ट किया जाता है। यहाँ पूरे पाकिस्तान से आए हुए लोगों का इलाज मुफ्त किया जाता है। अब कैंसर का फौरी इलाज ख्वाब नहीं हकीकत बन चुका है, जो हुकूमत सिंध और चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी के विजन से मुमकिन हुआ, क्योंकि ये सिर्फ इलाज नहीं उम्मीद है हर उस चेहरे की जो जीना चाहता है। खिदमत में सबसे आगे सिंध।
3: टैक्स पे करना अब हुआ आसान, अभी जैज कैश ऐप डाउनलोड करें और अपना टैक्स पे करके लकी ड्रॉ में शामिल हो जाएं और जीतें इलेक्ट्रिक स्कूटर। आसान पेमेंट्स और एक्साइटिंग रिवॉर्ड्स के लिए जैज कैश है ना।
4: 100 FM शेयर बंडल्स, वो भी डिस्काउंट पर। सब्सक्राइब करना तो बनता है, तो बस अभी जैज कैश ऐप से जैज V5 फैंटास्टिक बंडल लगाओ और पाओ 2000 रुपए तक का बेहतरीन डिस्काउंट अपने फेवरेट बंडल्स पर बड़े डिस्काउंट्स के लिए। जैज कैश है ना।
1: 100 FM
5: पैसे खर्च हो तो रिवॉर्ड तो बनता है। जैज कैश से सिर्फ 99 रुपए में रिवॉर्ड हब सब्सक्राइब करें, चैलेंजेस कंप्लीट करके अपना लेवल अपग्रेड करें और जीतें शानदार प्राइजेस। तो देर किस बात की, हर चैलेंज को एक्साइटिंग रिवॉर्ड में बदलने के लिए जैज कैश है ना।
1: 100 FM
5: जैज कैश के साथ पाओ फिर से 1 करोड़ जीतने का शानदार मौका। अब हर महीने अपने जैज कैश अकाउंट में 15,000 रुपए या ज्यादा का बैलेंस मेंटेन करने पर 60 लकी विनर्स को मिलेगा 5,00,000 रुपए तक का इनाम, और साथ ही साथ मिलेगा 1 करोड़ का बम्पर प्राइज। बैलेंस मेंटेन करने पर करोड़ों के कैश प्राइजेस जीतने के लिए जैज कैश है ना।
1: This program is brought to you by
6: Higher Kanaya No Frost IoT Refrigerator Twin Inverter Technology जिससे मिले maximum cooling और energy saving. No frost, no worries.
1: FM 100 Like us on facebook.com/FM247365 FM247365 This public service message is brought to you by FM 100. Traffic قوانین اور اشاروں کی پابندی کیجئے. ان کی خلاف ورزی قابل گرفت جرم ہے. Traffic قوانین کی پابندی کیجئے.

0: This program is brought to you by
1: Higher Kanaya No Frost IoT Refrigerator Twin Inverter Technology जिससे मिले Maximum Cooling और Energy Saving No Frost No Worries.
2: एक लड़की जब पढ़ेगी तो अपने पैरों पर खड़ी होगी. एक लड़की जब पढ़ेगी तो खुद मुख्तार बनेगी. एक समझदार माँ बनेगी. सिर्फ अपनी ही नहीं बल्कि सारे घराने की जिंदगी बदलेगी. आने वाली नस्लें संवारेगी. एक लड़की जब पढ़ेगी तो मुल्क को मजबूत बनाएगी. पाकिस्तान का आईन और कानून हर लड़की और लड़के को मुफ्त तालीम का हक फराहम करता है. लड़की को पढ़ाएंगे तभी तो आगे जाएंगे. वजारत इंसानी हुकूक हुकूमत पाकिस्तान.
3: मुफाद आम्मा के लिए पैगाम हुकूमत पाकिस्तान और FM 100 कराची की जानिब से पेश किया गया.
4: कभी सोचा है कि अब जंग की सूरत क्या है? अब जंग मैदान जंग में नहीं हमारे जहनों में लड़ी जा रही है. अब दुश्मन की गोलियां बारूद नहीं मालूमात हैं और निशाना हम सब. रियासत मुखालिफ ताकतें हमारे घरों के दरवाजे तक पहुंच चुकी हैं. टेक्नोलॉजी और इंटरनेट के पर्दे में दुश्मन छुपा बैठा है. वो ढूंढता है कमजोर लम्हे, बेरोजगार नौजवान, जरूरतमंद खानदान. फिर उनके सामने बिछाता है ख्वाब, बड़ी नौकरी, तेज दौलत, बैरून मुल्क सफर और फिर कभी रिपोर्टर की सूरत में, कभी एनजीओ वर्कर या फ्रीलांसर बनकर उनसे वो रास निकलवाता है जो दुश्मन का रास्ता खो देते हैं, जिनसे बदमनी, खौफ और फसाद हमारी गली कूचों तक उतर आते हैं, हमें अपनी ही मट्टी के खिलाफ खड़ा कर देता है. जो आपसे मालूमात लेता है वो आपकी जात तक पहुंचता है. आपकी तस्वीरें, पहचान, फोन, सब कुछ खतरे में डाल देता है. तो याद रखिए, किसी अजनबी को अपनी कोई हसास बात ना दीजिए. कोई मशकूक चीज, कॉल या पेशकश हो फौरन रिपोर्ट कीजिए. हसास मकामात बस अपने इदारे तक रखिए, क्योंकि हर लफ्ज, हर क्लिक, हर तस्वीर या तो हिफाजत है या खतरा. फैसला आपके हाथ में है.
3: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया.
0: लाइक अस ऑन facebook.com/FM247365.

0: その。
1: जब जिंदगी एक लफ्ज से रुक सी जाए, कैंसर, सिर्फ एक बीमारी नहीं, एक इम्तिहान है। हर दिन एक जंग से कम नहीं, एक ऐसी जंग जिसमें बहुत से लोग नाउम्मीद हो जाते हैं, मगर अब मायूसी उम्मीद में बदल रही है। डाउ कॉम्प्रिहेंसिव कैंसर सेंटर, हुकूमत सिंध का वो कदम जहां कैंसर का इलाज अब एक नए मायार पर मुमकिन है। गामा नाइफ एडवांस टेक्नोलॉजी के जरिए ब्रेन ट्यूमर का बगैर सर्जरी के इलाज किया जाता है, जो उमूमन एक ही दिन में मुमकिन होता है, और इसके जरिए एडवांस स्टेज ब्रेन ट्यूमर्स यानी तीसरे और चौथे स्टेज के साथ मल्टीपल मेटास्टेटिस का इलाज भी मुमकिन है। जदीद तरीन MR लिनक मशीन की बदौलत अब कैंसर जिस्म के किसी भी हिस्से में छुप नहीं सकता, दौरान इलाज इसे बराह रास्त देखा जा सकता है और रेडिएशन को उसके रिएक्शन के मुताबिक फौरन एडजस्ट किया जाता है। यहाँ पूरे पाकिस्तान से आए हुए लोगों का इलाज मुफ्त किया जाता है। अब कैंसर का फौरी इलाज ख्वाब नहीं हकीकत बन चुका है, जो हुकूमत सिंध और चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी के विजन से मुमकिन हुआ, क्योंकि ये सिर्फ इलाज नहीं उम्मीद है हर उस चेहरे की जो जीना चाहता है। खिदमत में सबसे आगे सिंध।
2: शेयर बंडल्स, वो भी डिस्काउंट पर, सब्सक्राइब करना तो बनता है, तो बस अभी जैस कैश ऐप से जैस V5 फैंटास्टिक बंडल लगाओ और पाओ 2000 रुपए तक का बेहतरीन डिस्काउंट अपने फेवरेट बंडल्स पर। बड़े डिस्काउंट्स के लिए जैस कैश है ना।
3: 100 FM।
4: पैसे खर्च हो तो रिवॉर्ड तो बनता है। जैस कैश से सिर्फ 99 रुपए में रिवॉर्ड हब सब्सक्राइब करें, चैलेंजेस कंप्लीट करके अपना लेवल अपग्रेड करें और जीतें शानदार प्राइजेस। तो देर किस बात की, हर चैलेंज को एक्साइटिंग रिवॉर्ड में बदलने के लिए जैस कैश है ना।
3: 100 FM।
5: जैस कैश के साथ पाओ फिर से 1 करोड़ जीतने का शानदार मौका। अब हर महीने अपने जैस कैश अकाउंट में 15,000 रुपए या ज्यादा का बैलेंस मेंटेन करने पर 60 लकी विनर्स को मिलेगा 5,00,000 रुपए तक का इनाम, और साथ ही साथ मिलेगा 1 करोड़ का बम्पर प्राइज। बैलेंस मेंटेन करने पर करोड़ों के कैश प्राइजेस जीतने के लिए जैस कैश है ना।
6: This program is brought to you by
7: Hire ka naya no frost IoT refrigerator, twin inverter technology jisse mile maximum cooling aur energy saving. No frost, no worries.
8: Like us on facebook.com/FM247365.
9: FM 247365.

0: शेयर्ड बंडल्स, वो भी डिस्काउंट पर। सब्सक्राइब करना तो बनता है, तो बस अभी जैस कैश ऐप से जैस B5 फैंटास्टिक बंडल लगाओ और पाओ 2,000 रुपए तक का बेहतरीन डिस्काउंट अपने फेवरेट बंडल्स पर। बड़े डिस्काउंट्स के लिए जैस कैश है ना।
1: This program is brought to you by
2: Hire Kar Naya No Frost IoT Refrigerator Twin Inverter Technology जिससे मिले Maximum Cooling और Energy Saving No Frost No Worries।
3: तेजी से फैलती डिजिटल दुनिया एक जबरदस्त सलाहियत के साथ साथ एक अहम जिम्मेदारी भी। मजहबी, फिरका वाराना या नस्ली बुनियाद पर नफरत अंगेजी, दहशतगर्दी की तरगीब से मुतल्लिक किसी भी तरह का मवाद फैलाना, इलेक्ट्रॉनिक जालसाजी, स्पैमिंग, धोखादही, बशमूल आइडेंटिटी थेफ्ट, चाइल्ड पोर्नोग्राफी और साइबर स्टॉकिंग और अनचाही मुदाखलत, मसलन किसी भी फर्द से जबरदस्ती या बार बार राबिता करना, मुतल्लिका शख्स की रजामंदी के बगैर उसकी तस्वीर या वीडियोस बनाना और शेयर करना वगैरह संगीन जराइम है। इस तरह की खिलाफ वर्जियां पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट और दीगर कानून के तहत कानूनी नतायज की मुतहम्मिल हैं। अगर आप इस बारे में कोई सवाल करना, इस सिलसिले में मदद तलब करना, किसी वाकये की इत्तला देना या इन कानून की खिलाफ वर्जी के मुर्तकिब अफराद के बारे में हुकूमत की मुआवनत करना चाहते हैं, तो बराह करम हमारी हेल्पलाइन पर कॉल करें।
4: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया।
5: डेंगू एक खतरनाक बीमारी है जो मच्छर के काटने से फैलती है। सुबह सूरज निकलने के बाद और शाम सूरज गुरूब होने से पहले ये मच्छर आपको काट सकता है।

0: This program was brought to you by
1: Higher Kanaya No Frost IoT Refrigerator Twin Inverter Technology जिससे मिले Maximum Cooling और Energy Saving No Frost No Worries
0: FM 100's Time Check It's 10 PM
2: Shared Bundles वो भी डिस्काउंट पर सब्सक्राइब करना तो बनता है तो बस अभी जैस कैश ऐप से जैस V5 फैंटास्टिक बंडल लगाओ और पाओ 2000 रुपए तक का बेहतरीन डिस्काउंट अपने फेवरेट बंडल्स पर बड़े डिस्काउंट्स के लिए जैस कैश है ना
0: 100 FM
3: पैसे खर्च हो तो रिवॉर्ड तो बनता है जैस कैश से सिर्फ 99 रुपए में रिवॉर्ड हब सब्सक्राइब करें चैलेंजेस कंप्लीट करके अपना लेवल अपग्रेड करें और जीतें शानदार प्राइजेस तो देर किस बात की हर चैलेंज को एक्साइटिंग रिवॉर्ड में बदलने के लिए जैस कैश है ना
0: 100 FM
4: जैस कैश के साथ पाओ फिर से 1 करोड़ जीतने का शानदार मौका अब हर महीने अपने जैस कैश अकाउंट में 15,000 रुपए या ज्यादा का बैलेंस मेंटेन करने पर 60 लकी विनर्स को मिलेगा 5,00,000 रुपए तक का इनाम और साथ ही साथ मिलेगा 1 करोड़ का बम्पर प्राइज बैलेंस मेंटेन करने पर करोड़ों के कैश प्राइजेस जीतने के लिए जैस कैश है ना
0: facebook.com/fm247365
5: FM 100
6: 31 saal FM 100 aapki awaaz assalamu alaikum pakistan
5: assalamu alaikum pakistan

0: शेयर्ड बंडल्स, वो भी डिस्काउंट पर। सब्सक्राइब करना तो बनता है, तो बस अभी जैस कैश ऐप से जैस B5 फैंटास्टिक बंडल लगाओ और पाओ 2,000 रुपए तक का बेहतरीन डिस्काउंट अपने फेवरेट बंडल्स पर। बड़े डिस्काउंट्स के लिए जैस कैश है ना।
1: 100 FM।
2: पैसे खर्च हो तो रिवॉर्ड तो बनता है। जैस कैश से सिर्फ 99 रुपए में रिवॉर्ड हब सब्सक्राइब करें, चैलेंजेस कंप्लीट करके अपना लेवल अपग्रेड करें और जीतें शानदार प्राइजेस। तो देर किस बात की, हर चैलेंज को एक्साइटिंग रिवॉर्ड में बदलने के लिए जैस कैश है ना।
1: 100 FM।
3: जैस कैश के साथ पाओ फिर से 1 करोड़ जीतने का शानदार मौका। अब हर महीने अपने जैस कैश अकाउंट में 15,000 रुपए या ज्यादा का बैलेंस मेंटेन करने पर 60 लकी विनर्स को मिलेगा 5,00,000 रुपए तक का इनाम और साथ ही साथ मिलेगा 1 करोड़ का बम्पर प्राइज। बैलेंस मेंटेन करने पर करोड़ों के कैश प्राइजेस जीतने के लिए जैस कैश है ना।
4: facebook.com/fm247365 FM 247365

0: शेयर बंडल्स, वो भी डिस्काउंट पर। सब्सक्राइब करना तो बनता है, तो बस अभी जैस कैश ऐप से जैस V5 फैंटास्टिक बंडल लगाओ और पाओ 2,000 रुपए तक का बेहतरीन डिस्काउंट अपने फेवरेट बंडल्स पर। बड़े डिस्काउंट्स के लिए जैस कैश है ना।
1: पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी कूट उसका नौजवान तलवार। पाकिस्तान की 61% आबादी 18 से 35 साल की उम्र के अफराद पर मुश्तमिल है, जो एक मुनफरिद आबादियाती सरमाया है। नौजवान हमारी मईशत की धड़कन और हमारे मुस्तकबिल के मेहमान हैं। अहम उनके खिलाफ एक खामोश जंग जारी है और वो है मुनशियात का बेदरेज। मुनशियात फरोश माफिया अच्छी तरह से जानती है कि कहां वार है। हमारे कॉलेजेस और यूनिवर्सिटियां उनका हदफ है, जहां वो नौजवान जहनों को खतरनाक नशा आवर अशिया से गिरा कर रहे हैं। यही वो मकाम है जहां इंसदाद मुनशियात फोर्स के एन एफ वाजे मकसद और मजबूत इरादे के साथ मैदान में

0: कभी सोचा है कि अब जंग की सूरत क्या है? अब जंग मैदाने जंग में नहीं, हमारे जहनों में लड़ी जा रही है। अब दुश्मन की गोलियां बारूद नहीं, मालूमात हैं, और निशाना हम सब। रियासत मुखालिफ ताकतें हमारे घरों के दरवाजे तक पहुंच चुकी हैं। टेक्नोलॉजी और इंटरनेट के पर्दे में दुश्मन छुपा बैठा है। वो ढूंढता है कमजोर लम्हे, बेरोजगार नौजवान, जरूरतमंद खानदान, फिर उनके सामने बिछाता है ख्वाब, बड़ी नौकरी, तेज दौलत, बैरून मुल्क सफर, और फिर कभी रिपोर्टर की सूरत में, कभी एनजीओ वर्कर या फ्रीलांसर बनकर उनसे वो रास निकलवाता है जो दुश्मन का रास्ता खो देते हैं, जिनसे बदमनी, खौफ और फसाद हमारी गली कूचों तक उतर आते हैं, हमें अपनी ही मट्टी के खिलाफ खड़ा कर देता है। जो आपसे मालूमात लेता है वो आपकी जात तक पहुंचता है, आपकी तस्वीरें, पहचान, फोन, सब कुछ खतरे में डाल देता है। तो याद रखिए, किसी अजनबी को अपनी कोई हसास बात ना दीजिए। कोई मशकूक चीज, कॉल या पेशकश हो, फौरन रिपोर्ट कीजिए। हसास मकामात बस अपने इदारे तक रखिए, क्योंकि हर लफ्ज, हर क्लिक, हर तस्वीर या तो हिफाजत है या खतरा। फैसला आपके हाथ में है।
1: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया।
2: Like us on facebook.com/fm247365
3: FM 247365

Like us on facebook.com/FM247365. FM247365.

facebook.com/fm247365 FM 247365

दिलती मोहब्बत ना सिला कोई, सितम खुद देखे है खफा कोई, वफा भी करके है बुरा कोई, ऐसा भी करता है भला कोई। छोड़ो ना करता मैं ख्याली बातें, लाता ना रिश्तों में पुरानी बातें, बना इश्क की मिसाल कोई।

0: वेलकम बैक कहेंगे सुनिया सुनरी सजनिया तेरे बिन दुनिया।
1: हाय हाय क्या बात है भाई।
0: अली जफर को सुना आपने और उम्मीद करते हैं कि आपको पसंद आए होंगे। अच्छा जनाब, आज का दिन बहुत ही हसीन और प्यारा दिन है। फेसबुक पर जो जो लोग मेरे साथ होंगे उनको तो खैर ये बात पता चल ही गई होगी, मगर मेरे बहुत सारे लिसनर्स ऐसे हैं जो फेसबुक पर नहीं। तो आज खुशी का दिन मेरे लिए इसलिए है कि मेरी प्यारी सी शहजादी जो है उन्होंने HSC पार्ट 2 जो है बहुत ही बेहतरीन नंबर्स में क्लियर कर लिया है माशाल्लाह से, और मैं बहुत खुश हूं, बहुत खुश हूं भाई। और बेतहाशा मेरे प्यारे प्यारे से दोस्तों ने, मेरे लिसनर्स ने, मेरे प्यारों ने मुझे मुबारकबाद दी। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। सो नाइस ऑफ यू। और उसके साथ साथ एक और भी शख्सियत ऐसी है जो इस दुनिया में आई और उनकी वजह से पाकिस्तान का जो हाल है आपको पता ही है। नहीं, उसकी वजह से नहीं है, मेरा प्यारा सा शहजादा गयाज, उसकी है बर्थडे। आए आए।

0: नहीं।
1: वेलकम बैक कहेंगे सुनियो साले तू माने नहीं कभी तो मानेगी। माशाल्लाह पर जोश अंदाज से शुरुआत करके नब्बे की दिहाई में ले गए सुनरी सजनिया, ये करेंगे संजू। उर्दू जुबान में आम तौर पर ठीक है जनाब बता दिया इन्होंने अलिफ से बड़ी ये तक, और इंग्लिश में भी इन्होंने बता दिया कि कितने हरूफ होते हैं छोटे और बड़े मिलाकर। छोटी बड़ी कौन सी, ये किस गेम में ये बोला जाता था, छोटी बड़ी कौन सी, ये चाय कौन सी। और साली तू आधे घंटे आधे घर वाली होती है। प्यारी जरीन काबिल एहतराम नौरीन बहना के लिए अनगिनत प्यार की दुआएं कह दें। शुक्रन शुक्रन शुक्रन, इस तरह तो होता है इस तरह के कामों में उदास भरते हो सर्दियों की शाम में। बहुत शुक्रिया संजीदा जी, बहुत शुक्रिया इरफान भाई, साली तो मानी ही नहीं वाला। अभी और भी गाने आ रहे हैं तुम्हारे लिए, डोंट वरी डोंट वरी। गयाज भाई के मैसेजेस पढ़े मैंने, ये समी शहजादा कह रहा है हैप्पी बर्थडे गयाज भैया। समी खुश नहीं लग रहा मुझे है, अबे डेट फिक्स हो रही है, तुम्हारे लफ्जों से खुशी नहीं छलक रही क्यों। मुझ कहती है चाचू सबा गुल मानो और सलीम भाई के लिए बहुत सारी बेस्ट विशेस। हैंडसम मुझे चमचम कहानी है, तुम चमचम खेली हो कभी, चमचम चम मेरा टूट गया बटन। और वाकई संजू के इंतखाब अच्छे थे, इसका मतलब है कल सुन रही थी तुम खामोशी के साथ। क्या हो गया तुम्हें, दवाई नहीं खाई थी क्या, आज दवाई खाई है तो मुश्क आ गई है, नाराज हो जाती हो यानी कि, समझ रहे ना। और क्या नाम है, नाम ढूंढ रहा होता हूँ भाई मैं, नाम नहीं लिखते हम लोग, अच्छी बात नहीं है भाई। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं भाई आप, लाला संजीदा आपी मुश्क मानूर और सब सुनने वालों को मेरा प्यार भरा सलाम सबागुल। और कह रहे हैं नदीम भाई बहुत बहुत मुबारक हो आपको, अल्लाह ताला मजीद खुशियां नसीब करे, आमीन सुम आमीन। थैंक यू मेरी प्यारी सी बहना, और कोई अच्छा सा सॉन्ग लाला और मुश्क के नाम कर दे। बिल्कुल लिख लेता हूँ सबागुल, ताकि मैं बोल ना जाऊं। और जनाब लाला गए जिगर, इसको बोलो कि आप क्यों फिकर करते हो, अभी तो आप दूध पीते बच्चे हो। ये किसको कह रहे हैं भाई, लाला पहले बताओ किसके लिए कह रहे हो, किसको कहूं, उसके बाद मैसेज फिर पूरा पढ़ूंगा, मजा भी आएगा ना, मसाला भी लगाऊंगा साथ में। और अरूसा मेमन मेरी प्यारी जी बहना आ गई, कह रही है आपकी बेटी की कामयाबी पर मुबारक, अल्लाह पाक हर एग्जाम में और जिंदगी में कामयाबियां कामयाब करे, आमीन सुम आमीन। गुड न्यूज आपको कुछ दिन में इरफान की दूंगी, हाय अल्लाह जी। देखो मेरी बात सुनो भाई, जितनी भी मेरी कजन मेमन बहने हैं मेरी, अरूसा मेमन, दुआ मेमन, मानूर मेमन, सब ये काम हुआ ना तो मिठाई से काम नहीं चलेगा। जितना इरफान मेमन को मैंने कन्विंस किया है तो मेरा तो जो है ना एक अदद खाना बनता है, हैं जी हैं जी। और थैंक्स समझाने के लिए, और सॉन्ग ऑल कजन्स के लिए बिल्कुल चलाएंगे मेरी प्यारी सी बहना। भाई कॉन्ग्रेचुलेशन आपकी बेटी को, और आपको भी बहुत सारी दुआएं, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। बस आप सबसे गुजारिश ये है कि मेरी प्यारी सी शहजादी के लिए भी और तमाम बच्चियों के लिए उनके अच्छे नसीब की बहुत सारी दुआएं करें, आमीन शुभ आमीन। और सलीम मेहमान आ गए है, अच्छा नजर झुकाकर चलने का चलना एक तो हया की निशानी है, और दूसरा ये कि कभी कभी जमीन पर पड़े पैसे भी मिल जाते हैं।
2: सलीम मेमन ठीक जाते हो तुम, बहुत अच्छी अच्छी बातें करती हो यार।
1: अल्लाह ताला आपको आपकी आपकी शहजादी हमेशा खुश रखे और कामयाबियां अता फरमाए, कामरानियां अता फरमाए और मुकद्दर बहुत अच्छे करे, आमीन सुमामीन। लेकिन मेरे प्यारे से शहजादे या शहजादी बहन या भाई कौन है आप, नाम लिख दिया करो भाई।
2: यार तुम लोग नाम नहीं लिखते तो मैं बहुत परेशान हो जाता हूँ।
1: हैप्पी बर्थडे गयास भैया, जरीन नूर कह रही है। वाह भाई वाह। चले भाई गयास को एक और गाना डेडिकेट करते हैं। अभी गयास भाई आपके लिए गाना एक और, एलो फड़ो।

0: दिल हो गया निसार माहिया, तू ही है मेरा प्यार माहिया। वेलकम बैक कहेंगे सुने हो आप सबको, ब्यूटीफुल ट्रैक है और ये गाना जो है गाया था वंस अपॉन अ टाइम एनी एक सिंगर आई थी, एनी इनका नाम था और ये ट्रैक बहुत मशहूर हुआ था और ये ब्रिटिश थे। मैंने ऐसी आवाज़ें तो देखा, उनकी उर्दू से भी आपको लग रहा होगा लेकिन बड़ा मशहूर हुआ था उस जमाने। समी कह रहे हैं नदीम भाई आपसे एक सवाल, आप अपनी बेटी को गिफ्ट में क्या दिया? कोशिश कर रहे हैं यार, महीने के आखिरी तारीख हम इस तरह का सवाल नहीं करते। नहीं नहीं बिल्कुल, अभी मतलब आज ही तो रिजल्ट आया है और इंशाल्लाह ताला उनको कोई ना कोई गिफ्ट तो देना पड़ेगा यार, उसके बगैर जान थोड़ी छूटेगी। और आप को बहुत प्राउड फील हुआ होगा माशाल्लाह से आपकी मेहनत रंग लेकर आई। देखो भाई मेरी मेहनत कोई भी नहीं है और इस हवाले से सिर्फ इतना जरूर कहूंगा, मेहनत तो सारी बच्ची ने की है। और एनी खालिद, वाह वाह नाम पूरा याद है, सही जा रहा है भाई समी, सारा नाम याद है तुझे। अच्छा खैर, बच्चियों के हवाले से जो बात की है इन्होंने, प्राउड नो डाउट, प्राउड तो मैं बहुत फील कर रहा हूं और यकीन मानो कि दिल इतना खुश है कि बयान से बाहर है। और आपको एक और बात बताऊं, जो वालिदैन है ये वो बात बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि जो बेटियां हैं ना वो बाप की होती हैं, हकीकत बता रहा हूं, और बेटे जो होते हैं वो मां के होते हैं। लाड प्यार के हवाले से नहीं है, हर लिहाज से बता दो, बेटी के दिल में जो है ना बाप के लिए बहुत दर्द होता है और बहुत अनगिनत मोहब्बत होती है। हर माँ बाप ने तो अपनी औलाद से प्यार करना ही है, लेकिन इस तरह तो होते हैं इस तरह के कामों में। और बस एक जो फर्ज है वो बहुत जरूरी जो बात है वो ये है कि आपके घर में जो बच्चे हैं, चाहे वो बेटी है या बेटा है, तालीम बहुत जरूरी है। तालीम इसलिए नहीं होती है कि जी नौकरी कर ले कुछ कमा ले, तालीम इंसान को शऊर देती है, तालीम इंसान को मैनर्स बताती है कि मैनर्स क्या होते हैं, कहां पर क्या बात करनी चाहिए, ये शऊर इंसान में आ जाता है, आदाब आ जाते हैं, तालीम ये चीजें इंसान के अंदर पैदा करती है। और बाकी जहां तक जाहिलियत का ताल्लुक है, जाहिल हम कहते हैं ना जाहिल है भाई, जाहिलियत का ताल्लुक तालीम से नहीं है, पढ़े लिखे लोग भी जाहिल होते हैं, जहालत जो है ना वो ऐसी एक लानत है। आप लोगों को इस हवाले से एक बहुत बड़ी मिसाल दे देता हूं मैं, एक बहुत ही अरब का पढ़ा लिखा इंसान जिसको अल्लाह ताला ने लानत भी अता फरमाई और जाहिल भी कहा, अबू जाहिल, यानी कि समझ रहे हैं ना आप। तो ये जहालत जो है इसको साइड पर कर दें, तालीम जो है वो इंसान के लिए बहुत जरूरी है, लिहाजा कोशिश करें कि अगर आप अपने बच्चों को कुछ दे सकते हैं ना तो वो सिर्फ और सिर्फ तालीम है, आप उनको तालीम दे दें, तरबियत के साथ, अच्छी तरबियत के साथ। अच्छी तरबियत नहीं होगी तो वो जाहिल हो जाएगा, पढ़ लिख कर भी जाहिल रहेगा। कुछ माँ बाप अपने बच्चों में फर्क भी करते हैं नदीम भाई, अक्सर करते हैं और बजाहिर नहीं लगता मगर साथ रहते हुए फील होता है ये बात। यार देखो मैं आपको एक बात बताऊं, माँ बाप कभी फर्क नहीं करता, माँ बाप औलाद को चाहता है, हर अपनी औलाद को चाहता है, बस ये होता है कि जब औलाद बड़ी हो जाती है और कमाने लगती है तो जिसकी कमाई ज्यादा होती है बस उसकी तरफ थोड़ा सा रुझान ज्यादा होता है, और अगर उसकी तरफ रुझान ज्यादा है वालिदैन का तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो दूसरी औलाद से प्यार नहीं करते, प्यार वो सबसे करते हैं, यानी कि समझ रहे हैं ना आप।
1: ये लंबी बातें हो जाएंगी भाई, आज खुशी खुशी की बातें करनी है सारी।
0: एनी खालिद का नाम तुम्हें याद है, बस ये बड़ी बात है समी, है तुम्हारे मैसेज पर ही चर्चा होगी। नौरीन तौसी मेरी प्यारी सी बहन आ गई फैसलाबाद, तो کہہ رہی ہیں السلام علیکم بھائی کیسے مزاج ہیں, ڈھیروں دعائیں آپ کے لیے اور پیارے پیارے لسنرز کے لیے بھی. ندیم بھائی آپ کو بیٹی کی کامیابی کی خوشی میں بہت بہت مبارکباد, پیش خدمت ہے. اللہ کرے یہ کامیابی آپ کی رانی بیٹی کی زندگی میں مزید بڑی کامیابیوں کی پہلی سیڑھی ثابت ہو. آمین سم آمین. جیتی رہو میری بہن, بہت بہت شکریہ آپ کا بھی. یعنی اور میری طرف سے غیاس کو برتھ ڈے کی مبارکباد. غیاس بھائی یقین مند کو ٹوکرا جو ہے نا مٹھائی کا بھیجنا چاہیے تھا یہاں پر. جو جو آپ کو برتھ ڈے وش کرتا ہے میں اس کے نام کا ایک گلاب جامن یا چمچم کھا لیتا. اور اللہ تعالیٰ غیاس کو لمبی عمر بابرکت اور خوشحال زندگی عطا فرمائے. آمین شم آمین. کیا بات ہے, کیا بات ہے بھائی. اور

दुबई से एक डेडिकेशन आई है फरहीन की, और हरम भी आपको सुन रही है। हरम कौन है भाई? ये मेरे नाम से ही पड़ा है हरम। नाम लेकर सॉन्ग डेडिकेट कीजिएगा। बिल्कुल करेंगे नाम। शी इज 6 ईयर ओल्ड विद गुड सेंस ऑफ म्यूजिक माशाल्लाह। हरम, अच्छा अच्छा भाई, जाहिर घर का कोई बच्चा होगा। तो फरीन, हरम को हमारी जानिब से कहिएगा कि हम आपको गाना डेडिकेट करने वाले हैं। अभी अगला गाना है भाई, और इरफान मेमन कहते हैं इतने डेंजर कजन हैं कि आने वाली का अल्लाह ही हाफिज है। आने वाली जो है ना वो पूरी टीम बना लेगी, और ये जो आपकी कजन है ना ये सारी उसके साथ खेल रही होंगी, वो उसको कैप्टन बना देंगी, और हाल बुरा किसका होगा, यानी कि समझ रहे हैं ना आप। अरे भाई आने तो दें उसको, यकीन माने पलकों पर रखेंगी कुछ अरसा फिर उसके बाद नन्हे बन जाएंगी। अच्छा जनाब, आपने कुछ चुटकुले भी भेजे हैं, वो हम शामिल करेंगे। इरफान मेमन और रयाज भाई कह रहे हैं समी शेख बहुत बहुत शुक्रिया, और जरीन नूर सिस्टर को भी उन्होंने शुक्रिया अदा किया है, नौरीन बहना का भी शुक्रिया अदा किया है, और सोन हलवा पक्का है जब भी आया कराची। नहीं भाईजान, सोन हलवा नहीं चाहिए, सोन हलवे का एक डब्बा दाल के हलवे का, और वहां पर यार मुल्तान में तो हलवों की क्या बात है, भरमार है। मतलब आपने मुझे 4 डब्बे लाकर देने मुख्तलिफ हलवों के। रियाज भाई, पैक ऑफ 4 हलवास बताओ पहले, इसकी तस्दीक करो कि तुम ला रहे हो या नहीं ला रहे हो, वरना कान से पकड़ लूंगा यहाँ आए तो। और मेरी नदीम भाई, इंशाल्लाह डेट फिक्स होने के बाद FM 100 आऊंगा आपको और गुफरान भाई को मुंह मीठा करवाऊंगा। नहीं बेटा, कोई जरूरत नहीं आने की, आप हमें बुलाएंगे किसी अच्छे से रेस्टोरेंट में, मुझे और गुफरान को खाना खाएंगे आपके साथ, और आपको और गुफरान भाई तो जिगर भाई, सो स्वीट यार। वैसे गायब कहां थे पहले ये तो बताओ, मैं वाकई में परेशान भी था, आपके लिए बहुत सारी दुआएं भी की थी।

हरम को हम डेडिकेट करेंगे फरहीन की जानिब से, हरम ये गाना आपके लिए भी है, और उसके बाद इरफान मेमन की जानिब से तमाम कजन्स को और अलीमुद्दीन यूसुफ जई साहब की जानिब से भी सबको। अब इतने सारे नाम एक ही गाने पे क्यों ले रहा हूं, उसका रीजन है, उसका रीजन ये है कि सबने सज्जाद अली की फरमाइश की है, ठीक है ना। अब सज्जाद अली का मैं गाना कोई भी चला सकता हूं, इरफान मेमन का तो आपको पता ही है, सज्जाद अली की फरमाइश करते हैं, अलीमुद्दीन साहब भी करते हैं, समी शेख जो है वो नहीं करते मगर हम डेडिकेट कर रहे हैं, और फरहीन की छोटी सी हरम जो है वो भी सुन रही है, उनको भी डेडिकेट कर रहे हैं। एलो फड़ो।

भाई के थे, मेरे पास आए थे, वो जवाब था सलीम भाई के लिए। ओके लाला, अब मैं दोबारा वो मैसेज पढ़ूंगा लाला का पहले। और इसको बोलो कि आप क्यों फिक्र करते हो, अभी तो आप दूध पीते बच्चे हो, उम्र बड़ी है। हो जाएगी किसी से मोहब्बत, ये जवाब मेरी तरफ से। क्या बात है लाला, तो भाई सलीम भाई आपकी जानिब से भी आना चाहिए। लाला वैसे आज थोड़े से खामोश खामोश से लग रहे हो यार, सच चल दे यार, हो या ना यार। नदीम भाई बहुत मस्ती कर रहे हो लगता है, गुरु मंदिर से नुमाइश के चक्कर लगा कर आए हो। साहबजादा भाई लगता है कोई बस बस चलाते हो तुम उस रोड पर। गुरु मंदिर से नुमाइश, गुरु मंदिर से नुमाइश। बिल्कुल खुश हूँ यार और मस्ती में भी हूँ, आपको पता है वजह। और मुश्क सिस्टर मिठाई आपके लिए तो कोई मसला ही नहीं, किसी भी मिठाई की शॉप पे चली जाए, चुड़ैल हो आप पूरी दुकान लूट लोगी। सिस्टर डोंट माइंड, साथ साथ में कहता भी है, मजाक भी करता है और कहता है माइंड भी नहीं करे सिस्टर। सुनियो कल मेरी नवासी हिबा फातिमा की बर्थडे है, आप विश कर दें। सलीम मेमन कह रहे हैं बिल्कुल करेंगे भाई, हिबा फातिमा।

वेलकम बैक कहेंगे सुनियो आप सबको, सोनी लगी थी ओ मेनू, सोनी लग दी भाई। ये तो हरम को हमने जो गाना डेडिकेट करना था वो तो कर दिया, लेकिन हरम को हमने एक और गाना डेडिकेट करना था, ये उसमें इनका नाम भी आ गया। तो हरम स्वीटी सी, 6 साल की हमारी प्यारी सी हरम जो है, हम उनको एक और गाना डेडिकेट करेंगे। तो देखते हैं उनका म्यूजिक सेंस कैसा है। हैं जी, ते हैं जी, आगे बढ़ते हैं आपके मैसेजेस के। जॉन एब, अच्छा जी, मेट्रोवेल से नदीम भाई, आपको मेरी जानिब से बेटी शहजादी की कामयाबी बहुत बहुत मुबारक हो। हैप्पी बर्थडे मुबारक अयाज भाई, चार्ली खुश हुआ। और बनी का अगर गाना हो जाए तो बिल्कुल होगा, है हमारे पास, चलाएंगे चार्ली। हैप्पी बर्थडे गयास भाई, अरे हैप्पी बर्थडे, बर्थडे चल रहा है भाई गयास। और अयूब लाला कह रहे हैं वो दोनों मैसेजेज सलीम।

हैं जी। और जनाब हमारे यूसुफ भाई बाबू से आगे हैं, तमाम सुनने वालों को सलाम का है, FM 100 की तमाम फैमिली को भी, खुसूसी तौर पर हमारी प्यारी सी आंटी को, चाची को, अरूसा को, गुलबानो, तमाम डॉक्टर्स, इमरान भाई, खिताब लाला, गुफरान भाई और आपके वालिद साहब को सलाम। नदीम भाई आपकी साहबजादी का रिजल्ट अच्छा आया, बहुत मुबारक हो। गयास भाई को बर्थडे बहुत बहुत मुबारक हो। यूसुफ भाई बहुत बहुत शुक्रिया, दुआओं की दरखास्त। अच्छी तबीयत बहुत जरूरी है हर इंसान के लिए, अच्छी तबीयत हर इंसान के लिए बहुत जरूरी है, ये हमारी बहना जरीन नूर कह रही हैं। और अल्लाह पाक आपको और संजू को बहुत कामयाबी अता फरमाए, दुआ है मेरी, जरीन नूर कह रही हैं। और एम नदीम नियाजी साहब अस्सलाम वालेकुम कह रहे हैं। सज्जाद अली नाइस सॉन्ग, क्या बात है नियाजी साहब, तनु होर गाने सुनावांगे, अच्छे अच्छे, यानी कि समझ रहे ना। मैंने सुना है कि मोहब्बत अंधी होती है, फिर किसी को मुझसे क्यों नहीं होती, ये आपको अभी बताया है ना सलीम मेमन साहब, इसका जवाब आपको दिया है लाला ने। जैन कह रहे हैं कि कैसे हो नदीम भाई, अयाज भाई को सुनता था, कैसे हैं वो? अयाज भाई ओके ठीक है, कल ही ड्रिप लगवाया। चाची कैसी हैं? बाकी लोग जहन से निकल गए, जहन मैं मजाक कर रहा था, अयाज बिल्कुल ठीक ठाक हैं, चाची भी माशाल्लाह से ठीक हैं, और बाकी कौन से निकल गए आपके जहन से? ये जहन जरा बताओ, अरूसा है, इरफान मेमन है, समी है, संजू है, गयास भाई है हमारे जिनकी आज बर्थडे है, बर्थडे। हाय हाय हाय, इरफान मेमन कहते हैं थैंक्स, सुनियो 17 इयर्स की एज से सिंगिंग कर रहे हैं, सज्जाद अली का एक शो देखा था, और हिबा फातिमा को हैप्पी बर्थडे भी गाया है 17 साल की उम्र में। हाँ बिल्कुल, इससे भी छोटे होते हैं भाई जब गाना वाना गा रहे होते हैं। मैं भले शो में कम आता हूँ पर आप यहाँ हो, आए दिल में, क्या बात है, ठीक है भाई, डन हो गया। और शुक्रिया नदीम भाई, बस नदीम भाई जॉब से लेट आता हूँ, थक जाता हूँ, साथ साथ शादी की तैयारी भी खुद कर रहा हूँ, और आपसे और सब सुनने वालों से बस दुआ की रिक्वेस्ट है। आप नहीं भी बोलोगे तो हम बहुत सारी दुआएं करेंगे आपके लिए। नौरीन बहना कहती हैं अंग्रेजी के अल्फाज बता दिए उन्होंने दुरुस्त, उर्दू के अल्फाज बता दिए दुरुस्त। नदीम भाई अपनी रानी बेटी को मेरी तरफ से अच्छा सा सॉन्ग डेडिकेट कीजिए। बिल्कुल करेंगे जनाब, ये सारे आज गाने जो चल रहे हैं ये हमारी साहबजादी और गयास भाई और हिबा के लिए, यानी कि समझ रही है ना। और बहुत बहुत शुक्रिया अदा किया है हमारे प्यारे से अलीमुद्दीन साहब ने। एंड संजू कहती हैं सबागुल संजीदा आप ही की तरफ से शुक्रन, आपके मुंह से संजीदा सुनना अच्छा लगता है। हम तो संजू ही कहेंगे, कल्लो जो करना। अच्छा संजू ने एक बहुत जबरदस्त सी बात लिखी है, वो थोड़ी सी मजेदार किस्म की है और उसके ऊपर चर्चा मैं करूंगा, तो इसलिए वो उसको मैंने थोड़ा सा साइड पर रखा हुआ है कि थोड़ी देर 2 बजे के बाद जो है उस पर जो है चर्चा करेंगे। और थम्स अप कर दिया है जनाब, फरीन तुम्हारे लिए गाना चलेगा, डोंट वरी, हिबा को बोल दो, हरम को बोल दो, हैं जी ते हैं जी। चले एक और गाने की जानिब चलते हैं, और ये गाने भी डेडिकेट करते हैं हम। डेडिकेशन किसकी है भाई, डेडिकेशन, अरे हाँ पहले तो मैं नाम ले दूं, हमारे नवीद भाई, छोटे भाई, भाई मैसेज कर दिया करो शहजादे, सलीम मेमन जरा बता दो यार हमारे छोटे भाई को, मैसेज कर दिया करे भाई। अच्छा गाने बड़े जबरदस्त से हैं, और अभी जो गाना हम डेडिकेट कर रहे हैं जनाब, ये सबागुल की जानिब से हम लाला को कर रहे हैं, अल्लो फड़ो। आवाज बैंड था एक जिसमें फाखिर और हारून होते थे 90s में,

वेलकम बैक कहेंगे सुनियो करा ब्यूटीफुल ट्रैक एंड आई होप यू लाइक इट। सवाल मैंने आप लोगों से ये किया हुआ है, बल्कि सबसे पहले नाम भी बताएं। जिन लोगों ने अभी अभी ज्वाइन किया उनको बता दें, जनाब मेरा नाम है नदीम अख्तर, प्यार से आप लोग मुझे कहते हो एन एस सोने। स्लीपलेस नाइट में मैं हूँ आपके साथ और आपका और मेरा साथ है 3 बजे तक और ये हल्ला गुल्ला जारी है सारी। इसमें शामिल होने का बहुत ही आसान सा तरीका, अपने मोबाइल के राइट मैसेज में जाइए के चाहे लिखिए अपना प्यारा सा नाम प्यारा सा मैसेज और उसको सेंड कर दीजिए 3636 पर। हैं जी ते हैं जी। सवाल मैंने आपसे ये किया है कि उर्दू के हुर्फे तहज्जी कितने होते हैं और इंग्लिश यानी कि अंग्रेजी के कितने होते हैं। इसका जवाब आ रहा है और दुरुस्त आ रहा है ज्यादातर लोगों से। और लाला कह रहे हैं जिगर खुश हूँ, बहुत हंस लिया, बहुत एक्टिव भी हूँ। अच्छी बात है, बस आपकी एक्टिवनेस पर जो है गाना भी डेडिकेट होने वाला है, डोंट वरी। थैंक्स संजीदा, आप ही अल्लाह आपको दोनों जहां की खुशियां नसीब करे और दोनों जहां की मुस्कुराहटें मुश्किलात आसान करे, आमीन। सबा कह रही हैं आपके लिए और कह रही हैं नदीम भाई सॉन्ग अजीब सादा बस लेकिन फिर भी शुक्रिया। हाय मेरी बहना, जाहिर है 90s के गाने तुम्हें कहां पसंद आएंगे, लेकिन तुम्हें एक ऐसा अच्छा सा गाना दोबारा डेडिकेट कर देंगे नाम लेकर जो तुम्हें समझ में आएगा, और अगर समझ में आए तो बता देना। नदीम भाई सज्जाद भाई 1983 में पहली बार अनवर मकसूद साहब के शो में आए थे और 83 में वो प्रोग्राम का नाम था सिल्वर जुबली और ये वो जो गाना इन्होंने गाया था वो था

मेरा प्यार तो ही हो तुम ही तो हो जाना। ब्यूटीफुल ट्रैक, वेलकम बैक। और ये अपने दौर का बहुत ही पॉपुलर ट्रैक था और इस ट्रैक के हवाले से संजू ने कह दिया है, जहीनू शुक्रन सॉन्ग के लिए, मेरा प्यार तुम ही हो। और अच्छा, अब जो है ना, इन्होंने एक बड़ी मजेदार किस्म की बातें कुछ लिखी हैं, उस हवाले से भी कुछ चर्चा करते हैं। समी साहब

वेलकम बैक कहेंगे सुने हूं आप सबको। अब जिया न जाए ब्यूटीफुल ट्रैक और हमारी प्यारी सी बहन सवा गुल कह रही है थैंक्स नदीम भाई ये सॉन्ग अच्छा था। लाला आपने गाना शना नहीं डेडिकेट करना यार मेरे को बताओ तो सही। और अरे समी भाई कसम से मैं अभी SMS करके आपको ये ही मशवरा देना है देने वाला था कि 14 अगस्त का झंडा हमारा होने वाली भाभी के घर पर लगा दें। आपने खुद ही इसका जवाब दे दिया। समी भाई मैंने मजाक में बोला था, अगर मेरी बात बुरी लगी हो तो माजरत। सलीम मेमन कह रहे हैं समी और इरफान मेमन भी कुछ कह रहे हैं बहुत अच्छी बातें की भाई सुने हो आपके सामने कोई भी टॉपिक रख दें आप बहुत अच्छा समझाते हैं बहुत बहुत शुक्रिया भैया आपको समझ में आ रही है जो मैंने टॉपिक आपके लिए रखा हुआ है ना बस उसके ऊपर आपने समझना है और आपने भरपूर तरीके से जो है बिरयानी खिलानी है। और फरीन कह रही है एक ट्रैक अगर हो जाए बिल्कुल होगा जनाब अभी चलाते हैं। और नौरीन बहना कहती है नदीम भाई संजू को भी मेरी तरफ से सॉन्ग डेडिकेट कर दे सुनने बहुत बहुत शुक्रिया बहुत खूबसूरत रात की इबादत के बारे में गुफ्तगू की नदीम भाई और संजू बहना थैंक यू वेरी मच। और हमारा एक बड़ा ही प्यारा दोस्त मेरा ग्रेट वसीम नियाज साहब और वसीम नियाज भाई के बारे में मैं आपको ये बता दूं मतलब एक इतना बड़ा नाम उनके साथ जुड़ा हुआ है वो खुद भी माशाल्लाह से बहुत जबरदस्त म्यूजिक कंपोजर हैं गाते भी अच्छे हैं। नियाज अहमद साहब पाकिस्तान की म्यूजिक इंडस्ट्री में म्यूजिक डायरेक्टर्स में एक बड़ा नाम बेतहाशा उनके ऐसे गाने हैं जो आपने सुने हुए हैं जो कि मुख्तलिफ सिंगर्स ने गाए हुए हैं बट वो म्यूजिक जो है वो नियाज साहब ने दी हुई है तो ये उनके साहबजादे वसीम नियाज उनका मुझे मैसेज आ रहा था तो खैर पता नहीं सुन रहा है या नहीं सुन रहा मेरा शहजादा लेकिन थैंक यू वेरी मच। और थैंक्स इरफान मेमन आप अपनी शादी हमको भी बुलाना समी आपका तो पता नहीं है आप बुलाते हो या नहीं बुलाते हो समी मेमन कह रहे हैं भाई वैसे हाँ दोनों शादियों में जाना तो चाहिए। संजू ये मैसेज मेरी समझ नहीं आ रही है भाई। अच्छा जनाब अभी फौरन से पेशतर हम क्योंकि वक्त बड़ी तेजी से गुजर रहा है और आप लोगों की डेडिकेशंस जो हैं वो अभी बाकी हैं तो अभी जहन से निकल गया था तो हम ये ट्रैक डेडिकेट कर रहे हैं जनाब फरहीन को। Wow.

वेलकम बैक आएंगे चन्ना वे चना। ये जनाब रहीम शाह का बहुत ही पॉपुलर ट्रैक उस दौर का, और युवा अफरीदी करे जिगर सॉन्ग का तो फरमाइश की है मैंने सवा गुल मुश्क हिना के लिए था। अरे जनाब चला देते हैं आपके लिए, और एक दो चलाया था हैं जी, और एक और चला देते हैं। और थैंक्स इरफान मेमन। अच्छा ये उन्होंने कहा, इरफान मेमन कह रहे हैं सलाम भाई, पहले लड़की तो ढूंढ लें फिर मैं ओके करूंगा, फिर सब कुछ होगा। आप ओके क्यों करेंगे पहले ये बताएं, वजह क्या आपके ओके करने की? अम्मी है ना, बहने है ना, बस ओके कर देंगी, बहने को चुड़ैल थोड़ी लेकर आएंगी। लेकिन हाँ आपका बनता है कि आप एक नजर जरूर देखें, और ये आपका फेवर कर रहा हूं, आप कह रहे हैं ना मेरा भी फेवर करें, बिल्कुल आपका फेवर कर रहा हूं। देखिए पसंद उन पर छोड़ दीजिए और फाइनल डिसीजन आपका होगा कि आप देखें, और अगर समझ आता है तो अच्छी बात है, लेकिन मना ना करें तरीके से। मतलब ये घर वालों को भी कहूंगा, ये अक्सर ऐसा होता है। देखें मैं इस हवाले से भी, मैं रिश्तों के हवाले से भी बात कर लूं कि जी लड़की को, लड़की के लिए रिश्ता लेकर गए, ठीक है ना, रिश्ता लेकर गए तो लड़के को पता नहीं है। ये खुसूसी तौर पर मैं कजन्स जो हैं इरफान मेमन की कजन, वो भी जरा गौर से इस बात को सुने, ठीक है। तो लड़की के, लड़के के लिए रिश्ता लेने चली गई, लड़की को देखा पसंद आ गई, लड़के को दिखाई तस्वीर, लड़के को समझ में नहीं आई। हक है हर लड़के और लड़की का पसंद ना पसंद होने का, इसमें कोई वो नहीं है, दो राय नहीं है। अब आप देखोगे घर वाले जो हैं वो कहेंगे जी कि बस हम बता देंगे आपको, बस बता देंगे। दिस इज रॉन्ग, ये गलत हरकत है कि जिससे किसी की दिल आजारी हो, चाहे उस लड़की की या उसके घर वालों की। हमेशा कोशिश ये करें कि कहीं भी आप भाई का या किसी भी ऐसे घर के फर्द का रिश्ता तलाश कर रहे हैं और लड़की देखना चाह रहे हैं, तो लड़की वालों को कभी भी डायरेक्टली ना बोलें कि भाई हम देखने आ रहे हैं, ठीक है ना। सबसे पहले आप किसी ऐसे तरीके से उस लड़की की कोई तस्वीर या किसी जानने वाले से मोबाइल पर ही तस्वीर वगैरह देख ली, समझ में आई, लड़के को दिखाएं, लड़के को अगर समझ में आ जाए तब आप रिश्ता लेकर जाएं या बात चलाने की कोशिश करें। उससे ये है कि अगर लड़की वाले इनकार कर देते हैं तो वो अलग बात है, बट अगर वो इनकार नहीं करते और आपकी तरफ से इनकार होता है तो उनकी दिल आजारी होती है। और खुसूसी तौर पर मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं जितने भी सुनने वाले हैं, कि ये मसले मसाइल तो चल, ये तमाम मामलात तो चल रहे होते हैं लड़के वाले और लड़की वालों के, घर वालों के दरमियान में, लेकिन जब किसी लड़की को ये बात पता चलती है ना कि मेरे लिए बात चल रही है कहीं और उन्होंने मना कर दिया, तो उसका कॉन्फिडेंस लेवल जो है ना, उसका एतमाद जो है ना, वो बहुत डैमेज होता है, उसको बहुत धचका लगता है। गो के वो अपने लबों से या अपने एटीट्यूड से ये बात कहती नहीं है, मगर फर्क पड़ता है। तो लिहाजा, और इससे जाहिर दिल आजारी है, तो कोशिश किया करें कि जब रिश्ते कोई कायम करने हैं तो इस तरीके से रिश्ते कायम करें कि खुसूसी तौर पर लड़की के लिए मैं ये बात कर रहा हूं कि उनको पता ना चले, और पहले आप किसी ना किसी तरीके से कोई ना कोई ऐसा तरीका इख्तियार करें कि उनको पता चले बगैर आप उस लड़की की तस्वीर जो है वो, जिसके साथ आपने शादी करनी है, उसको कम से कम दिखाएं, उसकी राय लें और उसके बाद बात को आगे बढ़ाएं। आगे बढ़ते हैं जरा, ऑफिस में, शो में, घर में और कहीं दावत जाएं वहां पर भी शादी का टॉपिक। ये देखिए इरफान मेमन, मसला पता क्या होता है कि ये बेसिकली एक उम्र होती है, और इस उम्र में हर एक के लिए ये बात की जाती है, उस उम्र में हर कोई यही बात कर रहा होता है। बस ये सोचें कि ये वक्त अगर निकल गया, लोगों ने पूछना या बातें करना खत्म कर दी,
तो फिर ये कहेंगे अबे यार टाइम पर शादी कर लेता तो अच्छा था, अकेला ही रह गया यार। बस अल्लाह ताला ये वक्त ना लाए तो ये इस पर माइंड ना करें। अगर कोई पूछता है आपसे तो इसको दिल पर नहीं लें कि भाई क्यों क्यों पूछ रहे हो भाई। जिंदगी आ गई है शो बेहतरीन, याद भी नहीं करते। हाय अल्लाह जी, जिंदगी को याद थोड़ी करते हैं, जिंदगी तो साथ होती है, यानी कि समझ रही है ना आप। और लाइट चली गई है आपकी आवाज में जिंदगी। अच्छा भाई, अभी हम गाने की जानिब जा रहे हैं और ये ट्रैक जो है ये हम डेडिकेट कर रहे हैं हमारे प्यारे से अय्यूब लाला की जानिब से, सबा गुल को, मोश्क को, हिना गुल को। तो आप तीनों के लिए ये गाना है जनाब अय्यूब आफरीदी की जानिब से।

अच्छा जनाब, मुझे किसी ने बनी के लिए भी कहा था कि बनी का गाना अगर चला दें तो वो चल रहा है जनाब। हमारे अमीन भाई

वेलकम बैक, हो जाऊंगा दीवाना। लाला गाना कैसा लगा यार? थैंक्स लाला एंड नदीम भाई, सवागुल कह रही हैं इस गाने के हवाले से। और अब चलते हैं जनाब एक और ट्रैक की जाने, वक्त कम है, मुकाबला सख्त है, और ये ट्रैक हम डेडिकेट कर रहे हैं जनाब। वैसे तो मैंने ये ट्रैक डेडिकेट करना था मेरी प्यारी सी बहन नौरीन तौसीफ को, मगर ये क्योंकि उनका ये पसंदीदा गाना है और ये ट्रैक जो है उनकी जानिब से, उन्होंने कहा था कि संजू को डेडिकेट कर दें, तो संजू आपके लिए नौरीन की जानिब से एलो फड़ो।

वेलकम बैक कहेंगे सुन रे मोरे प्यारे साजना मुरा तुम बिन जिया नहीं लागे। अब्बास अली खान बहुत जबरदस्त सिंगर थे और अब पता नहीं क्यों नहीं गाते, ये उनकी मर्जी है कि वो गाना नहीं गाते। खैर जी, वक्त तेजी से गुजर गया और रिश्तों की मालूमात मैंने अपने बच्चों की पसंद पर छोड़ दिया, उन्होंने अपनी पसंद बताई और मैंने अच्छी तरह छानबीन करके रिश्ते कर दिए और मेरे हर फैसला जो है वो दुरुस्त साबित हुआ। माशाल्लाह माशाल्लाह शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह और बहुत बहुत शुक्रिया नदीम भाई आपका। ये कह रही है मेरी प्यारी सी नौरीन बहना और इरफान मेमन भी कुछ कह रहे हैं, सोने हो एक सॉन्ग एफएम क्वीन अरूसा सिस्टर को डेडिकेट कर दें। इतनी देर से तुम्हें अरूसा सिस्टर याद आई है यार, हैं? खैर हम उनको कल डेडिकेट जरूर करेंगे, ये मतलब नेक्स्ट शो में। ये रहा वादा और लाला आपका गाना हमने डेडिकेट किया यार, आपने बताया नहीं कुछ यार कि गाना शाना कैसा लगा आपको। खैर एनीवे अभी आपसे चाहेंगे इजाजत और जिन जिन लोगों ने दुआ दी मेरी प्यारी सी शहजादी को उनका बहुत बहुत शुक्रिया और दुआओं में याद रखिएगा हमेशा। जाते जाते कुछ मैं एक जायचा खींच कर जाना चाहता हूं और उसके बाद आपको ये गाना सुनाना चाहता हूं। मेरी तरफ से आपको स्पेशली डेडिकेट है, स्पेशली मोहब्बत के शिकार जो लोग हैं। तसव्वुरात जो है ना, इंसान तसव्वुर जो करता है और तसव्वुर में मुस्कुराता है, क्या बात है। बस आप सोचें कि चांदनी रात हो, हल्की हल्की सी फुहार हो और सामने से आपका महबूब सफेद कपड़ों में मबलूस, और सफेद कपड़े कौन से, शलवार कमीज नहीं, गरारा पहना हो सफेद रंग का, बाल खुले हो और सामने से वो आ रहा हो, ये आप तसव्वुर कीजिए और आप के बैकग्राउंड में ये ट्रैक चल रहा हो। मेरी जानिब से आप सबके लिए ये ट्रैक, इंशाल्लाह मुलाकात होगी आपसे इतवार वाले दिन। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।

साथ दिल के चले, दिल को नहीं रोका हमने, जो न अपना था उसे टूट के चाहा हमने, एक धोखे में कटी उम्र हमारी सारी, क्या बताएं किसे पाया।